FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं जगत एक सपना पर विचार।
3: उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये अटल सत्य है, ये जगत सपना। हमें सत्य इसलिए प्रतीत होता है कि हमारा चित्त रूपी मल से मलिन है। इस पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष एवं वासनाओं के आवरण आच्छादित हैं। इसलिए संसारी जगत के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। किंतु त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने पितंबरा प्रज्ञा द्वारा इस जगत के सत्य असत्य की पहचान करके ये निर्णय दिया है कि यह जगत सपना है। इसमें सुख नहीं है, यह परिवर्तनशील है, इसको छोड़कर जाना है। वैसे तो मित्रावस्था में शरीर और मन के भावों की जो अनुभूति होती है उसे स्वप्न कहा जाता है। अर्थात जब मनुष्य सोता है तब शरीर में व्याप्त प्रधान पदार्थ अथवा चित्त की प्रधान वृत्ति व विचारों के अनुसार वह कुछ अनुभव करता है। मित्रित अवस्था में जीव का मन और शरीर अचेत होता है, इस कारण स्वप्न में पदार्थों के अनुभव करने की भ्रांति होती है। लेकिन जब किसी के शरीर अथवा मन में विक्षेप कम होता है तब सपने में भूत, वर्तमान या भविष्य के यथार्थ दृश्य उसके सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक कर्मों और वासनाओं या चेष्टाएं जो कि क्रियात्मक रूप से अभी नहीं आई हैं और मन ही मन उनकी लालसा बनी है, वो भी स्वप्न काल में सामने आती हैं और हमारी कल्पना के अनुरूप स्वप्न आते हैं। फलस्वरूप स्वप्न काल में हर्ष, शोक, दुख, सुख इन सब का अनुभव होता है। जब तक निद्रा न टूटे तब तक सत्य ही प्रतीत होता है। जबकि एक छोटे से सपने का इतना प्रभाव है तो संसार के इतने लंबे सपने का प्रभाव तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसमें हर प्रकार का आकर्षण है, अनुभूतियां हैं, स्पर्श है, हर्ष, शोक हैं, वेदनाएं हैं, इसमें इंद्रियां और विषय हैं। इंद्रियां और विषयों का तो जन्म जन्मों का नाता है, इसलिए इंद्रियों का विषय में आकर्षण है। ये आकर्षण सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होने देते, लेकिन महापुरुष तो समय समय पर हमें इस झूठे सपने से जगाने का उपदेश देते रहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसा सपना रैन का ऐसा ये संसार, एक दिन छोड़ के जाना है बिसरत न लागे बार।
2: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे जगत एक सपना पर विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

गीता ज्ञान अमृत वाणी है। जीवन का सच्चा सार हर श्लोक में छिपा हुआ है। धर्म कर्म और प्रेम अपार, जो गीता के ज्ञान को हृदय में उतार ले उसका अज्ञान मिट जाता है। ईश्वर के उपदेशों से जीवन का हर मार्ग प्रकाशित हो जाता है।

दया धर्म नहीं अगर तेरे मन में, फिर कैसी प्रभु की भक्ति है। करुणा बिना हर पूजा अर्चना अधूरी और अशक्ति है। ईश्वर को मंदिर में नहीं इंसानियत में पाया जाता है। जिस मन में दया बस जाए वही प्रभु का वास हो जाता है।

जैसा तेरा रूप है मैया, वैसी तेरी महिमा न्यारी। कण कण में तेरी शक्ति बसे, तू ही जग की पालनहारी। तेरी कृपा की छाया में हर संकट दूर हो जाता है। माँ के चरणों में झुकते ही मन को सुकून मिल जाता है।

इसी भजन के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज इस कार्यक्रम में आपने सुरेश वाडकर व साथी जगजीत सिंह व चित्रा सिंह, अनूप जलोटा, शर्मा बंधु और सुजय बर्मन के गाए भजन सुने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की बात। आज की बात सुनने वालों को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। आज है 18 जून और आइए जानते हैं इतिहास में आज के दिन की खासियत। श्रोताओं, 18 जून को प्रतिवर्ष गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया था। 18 जून गोवा की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 18 जून को हुई इस क्रांति के जोशीले भाषण ने आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। श्रोताओं, गोवा की मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चला। अंततः 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 18 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। श्रोताओं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ इनका विवाह हुआ था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में निपुण रानी लक्ष्मीबाई ने हड़प नीति के तहत अपनी रियासत को अंग्रेजों को सौंपने की बजाय अंतिम सांस तक संघर्ष करने का निर्णय लिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल हीरोज ने झांसी पर हमला किया। श्रोताओं, रानी ने डटकर मुकाबला किया और अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर किले से छलांग लगाई। इसके बाद वे तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पहुंची। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में भीषण युद्ध के दौरान वे बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई। श्रोताओं, नौकायन में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे होमी डैडी मोतीवाला का जन्म 18 जून 1958 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें 1993 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया तथा 1994-1995 के लिए संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 2002 में इन्हें नौका क्रीड़ा में बेहतरीन कोचिंग देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रोताओं, होमी डैडी मोतीवाला ने नौका क्रीड़ा में अनेक प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। इन्होंने 1987-88 में बंबई से सिडनी तक नौकायन अभियान में हिस्सा लिया। श्रोताओं, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अली अकबर खां की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1922 को बांग्लादेश स्थित कोमिला जिले के शिवपुर गाँव में हुआ था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खां पश्चिमी श्रोताओं के समक्ष भारतीय संगीत प्रस्तुत करने में सक्रिय रहे। इनके संगीत की जड़ें भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी परंपरा में जमी थी। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण और 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पिछले 5 दशकों से इन्होंने दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का झंडा बुलंद रखा था। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिम में प्रतिष्ठित करने के क्षेत्र में इनका महान योगदान था। 18 जून 2009 को उस्ताद अली अकबर खां का स्वर्गवास हो गया। श्रोताओं, भारत के प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह की आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, पंजाब में हुआ था। इन्हें लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। सन 1956 मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में इन्हें पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था। मिल्खा सिंह ने 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में आयोजित हुए एशियन गेम्स में इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। श्रोताओं, साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उस समय आज़ाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये पहले भारतीय थे। सन 1959 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
18 जून 2021 को मिल्खा सिंह।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा के साथ मैं हूँ ज्योति जाटव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जब आप सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो क्या वो दिन आपको याद आते हैं जब स्कूल से पिकनिक जाने की खबर मिलती थी? याद है आपको वो रात भर उत्साह के मारे नींद ना आना, सुबह सुबह मम्मी का वो स्वादिष्ट आलू पूरी और अचार का टिफिन पैक करना, पानी की वो नीली लाल बोतलें और बस में दोस्तों के साथ अंताक्षरी गाते हुए जाना। आहा, क्या दिन थे वो, है ना? श्रोताओं, आज जून की 18 तारीख है और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व पिकनिक दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें भागदौड़ वाली इस डिजिटल जिंदगी से दूर प्रकृति की गोद में अपनों के साथ बैठकर चंद लम्हे मुस्कुराने का न्योता देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पिकनिक शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रोताओं, पिकनिक शब्द सुनना जितना मज़ेदार लगता है, इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। ये शब्द फ्रांस से आया है। फ्रेंच भाषा में एक शब्द था पिकनिक। इस शब्द का जिक्र 17वीं शताब्दी के आसपास की किताबों में मिलता है। शुरुआत में इसका मतलब आज जैसा नहीं था। तब फ्रांस में पिकनिक का मतलब होता था एक ऐसा इंडोर गेट टुगेदर या दावत जहां आने वाले सभी मेहमान अपने साथ कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे। इसके बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां के शाही बाग बगीचे आम जनता के लिए खोल दिए गए। तब 19वीं सदी की शुरुआत में ये ट्रेंड इंग्लैंड और बाकी देशों में पहुंचा, जहां लोग पहली बार खुले आसमान के नीचे हरी भरी घास पर चटाई बिछाकर टोकरी में खाना लेकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगे। और देखते ही देखते ये दुनिया भर में अपनों के साथ वक्त बिताने का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया। श्रोताओं, अब जरा आज के दौर की बात करते हैं। आज हम साल 2026 में जी रहे हैं, जहां हमारे पास वर्चुअल पिकनिक तो है, सोशल मीडिया पर पिकनिक के हैशटैग्स भी हैं, लेकिन वो असली वाली पिकनिक कहीं खो गई है। आज हमारे बच्चे पार्क की घास पर तितरियों के पीछे भागने की बजाय मोबाइल स्क्रीन पर गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि अब हम एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर भी सबके हाथ में मोबाइल होता है। ऐसे में विश्व पिकनिक दिवस मनाने की ज़रूरत आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। श्रोताओं, पिकनिक सिर्फ खाना खाने की जगह बदलना नहीं है, बल्कि ये मानसिक तनाव को दूर करने, प्रकृति से जुड़ने और अपने परिवार को बताने का जरिया है कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। श्रोताओं, आज का ये दिन हमसे ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े किसी हिल स्टेशन पर जाएं या बहुत सारे पैसे खर्च करें। पिकनिक तो बेहद सादगी का नाम है। आप आज या फिर इस आने वाले वीकेंड पर एक छोटा सा प्लान बना सकते हैं। अपने शहर के किसी पास के पार्क में किसी पेड़ की छांव तले, या अगर बाहर बहुत गर्मी है तो अपने घर की छत या बालकनी पर ही एक चटाई बिछाइए। घर का बना सादा खाना, कुछ फल, पानी की बोतल साथ रखिए। वहां बैठकर पुरानी तस्वीर देखिए, अंताक्षरी खेलिए, लूडो या कैरम खेलिए, या बस एक दूसरे की बातें सुनिए। आप महसूस करेंगे कि जो सुकून हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं मिलता, वो अपनों के साथ इस सादगी भरे वक्त में मिल जाता है। तो श्रोताओं, आज विश्व पिकनिक दिवस पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी की इस आपाधापी में से थोड़ा सा वक्त चुराइए। आज अपने बच्चों को, अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को वो पुराना वाला बचपन, वो पुरानी वाली पिकनिक दोबारा जीने का मौका दीजिए। श्रोताओं, चलते चलते ये खूबसूरत पंक्तियाँ आप सभी के लिए। बचपन की वो पिकनिक वो यादों का कारवां, बचपन की वो पिकनिक वो यादों का कारवां, चलो फिर से ढूंढे वो सुकून का आसमां। छोड़ो ये मोबाइल ये बातें दुनिया जहान की, छोड़ो ये मोबाइल ये बातें दुनिया जहान की, आओ बैठे साथ सुने धड़कने इंसान की।
उम्मीद है श्रोताओं, आज का दिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी मीठी यादें लेकर आएगा। इसी के साथ ही आज की कार्यक्रम विविधा से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और उसके बाद हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आज अपराह्न 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरितमानस से सुनिएगा 128वां प्रसंग। कुमाऊनी लोकगीत आप सुनते हैं लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और शैलस्वर कार्यक्रम में शाम 5:05 पर। कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर आप सुनते हैं सुबह 11:30 पर। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं दोपहर 2 बजे। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 8:30 पर और रात्रि 10:30 पर। मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंग होगा सुबह 10:05 पर। सुगम संगीत दोपहर 1:15 पर। सबरस रात्रि 8 बजे और पुनः सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि 10 बजे। दोपहर 12:30 पर अर्पण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सहभागिता से सुदृढ़ होते समाज। साथ ही सुनिएगा सुकन्या समृद्धि योजना सरकार के 12 वर्ष विषय पर श्री जेएस बोरा अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा मंडल से दीपा जोशी की बातचीत। दोपहर 1:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से आप सुनेंगे 1309वीं कड़ी। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती विषय पर डॉक्टर पूरन सिंह मेहता की वार्ता। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा नए स्किल्स सीखते रहें। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा महारानी लक्ष्मीबाई शहीदी दिवस और स्वस्थ हृदय के लिए प्राणायाम का महत्व। भक्ति संगीत कार्यक्रम में कुछ भक्ति रचनाओं का आनंद लीजिएगा शाम 6:41 पर। शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा जेठी धान की उन्नत खेती व प्रजातियां, मृदा रहित खेती के लाभ और खेती बचाओ अभियान, रासायनिक खादों का संतुलित व न्यूनतम प्रयोग। साथ ही सुनिएगा फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर महेंद्र सिंह से भेंटवार्ता। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे श्री बी एस एन कैंकर के उर्दू नाटक का हिंदी रूपांतर नाटक हम लोग मुजरिम है। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। सुरबहर कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम में सुबह 11 बजे। मेरी पसंद कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे। एक ही फनकार कार्यक्रम में दोपहर 2:45 पर। सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम में अपराह्न 3 बजे। फिल्म संगीत कार्यक्रम में शाम 7:40 पर और इंद्रधनुष कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से 128वां प्रसंग।

अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

श्री रामचरितमानस से अभी आप सुन रहे थे 128वां प्रसंग। गायक थे भूपेंद्र सिंह और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

पहले मुख्य समाचार। मेरठ से ऋषिकेश तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त, जल्द होगा सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन।

0: विस्तार से। मेरठ के मोदीपुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बीच सहमति बन गई है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट
1: के तहत मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक बिछाया जाएगा जो मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। प्रस्तावित 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि NCRTC नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी परियोजना को अपनी सहमति दे दी है। इस रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के साथ साथ दिल्ली आने जाने वाले लोगों को आधुनिक परिवहन का नया विकल्प मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली से ऋषिकेश की यात्रा में सड़क मार्ग से लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जबकि नमो भारत ट्रेन के संचालन के बाद यह सफर करीब 2.5 से 3 घंटे कम में पूरा किया जा सकेगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से समीना।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और जन सुविधा परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, सड़क निर्माण, पर्यटन, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत मायापुर में फायर स्टेशन के लिए 50 बिस्तरों वाले बैरक निर्माण तथा विभिन्न नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और आवश्यक उपकरण की खरीद के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा कोटद्वार में LED स्ट्रीट लाइट की स्थापना, श्रम न्यायालयों में महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पृथक शौचालय और अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग कर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय से नीतियों का निर्माण होता है, जन कल्याणकारी योजनाओं को दिशा मिलती है और प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार होती है। श्री धामी ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में सचिवालय परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर कल रात पर्यटकों से भरे एक टेम्पो ट्रैवलर के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के समय वाहन में 29 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल तथा दुर्घटना स्थल के मार्ग पर घायलों के उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। वाहन में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी बताए जा रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए शीघ्र ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
3: विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को राज्य पूरा कर रहा है और प्रदेश की साक्षरता दर वर्तमान में 98% से अधिक है उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में वयस्कों के लिए बुनियादी साक्षरता, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों के सहयोग से गांवों को गोद लेकर निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों को विशेष रूप से शामिल किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा अब तक मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को मिल चुका है। उत्तराखंड इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का छठा राज्य बन सकता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हरिद्वार जिले में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों तथा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग कर योग एवं स्वस्थ जीवन शैली का संदेश जन जन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। सचिव गृह शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों को प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। देहरादून में आयोजित बैठक में सचिव गृह ने अगस्त माह के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सुधारात्मक व विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए के साथ ही सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को नागरिक केंद्रित पुलिसिंग एवं EFIR को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। साथ ही 60 एवं 90 दिनों की निर्धारित समय सीमा में FIR की विवेचना एवं निस्तारण में सुधार लाने को कहा गया। इसके अलावा सभी ऑनलाइन प्रणालियों को एकत्रित कर एक डेटा, एक प्रविष्टि के सिद्धांत को लागू करने तथा जेल एवं कारागार विभाग के बंदियों की 100% न्यायालयीन पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्र को विकसित, समृद्ध और सशक्तशाली बनाने के लिए की राह में युवाओं का योगदान अहम है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा की और विश्वास के साथ देख रहा है। ये बात उन्होंने उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युवा संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विचारों का मतभेद लोकतंत्र की सुंदरता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता हमारी समान पहचान होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

मेरठ से ऋषिकेश तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा का विस्तार, मार्ग प्रशस्त, जल्द होगा सर्वे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के लिए मंत्रिमंडल

0: मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अर्जुन कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: आईएसआई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान आईएसआई का ही है।
0: जब से आपने आईएसआई के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। आईएसआई के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं,
1: विश्वास जगाएं।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अर्जुन कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अर्जुन कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा लोक मंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अर्जुन कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त

0: बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
2: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
11: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
8: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुँच मिलेगी।
12: We have a huge pool of talent.
13: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए

0: शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवाटेक।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग अहीर भैरव। FM 100.8 मेगाहर्ट्स और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी

0: दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री की यात्रा से विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंध और मजबूत होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वायदा भी शामिल है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड ने 3-3 विकेट लिए जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप ए के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने 36 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति जाटव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं ना, प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। कभी किसी की मुस्कान में प्यार मिल जाता है तो कभी किसी की बातों में ही प्यार मिल जाता है और कभी किसी की यादों में चुपके से बसा रहता है। श्रोताओं, प्यार का रंग भी कितना अजीब होता है, ये कब कहाँ और किससे हो जाए कोई नहीं जानता। बस इतना ज़रूर है कि जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो जिंदगी का हर गीत और भी हसीन लगने लगता है। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ शुरू करते हैं आज का ये फरमाइशी सफ़र।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में आप मुझे अच्छे लगे लगने लगे फिल्म से। गीत इब्राहिम अश्क और देव कोहली का था और संगीत राजेश रोशन का। फरमाइशकर्ता थे संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सायरा सपकाल, विशाल सपकाल। माल ठेकरी अमरावती से प्रशांत ठेकरे, वर्षा ठेकरे और श्रद्धा ठेकरे ने। श्रोताओं लीजिए पेश है अंदाज फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के लिखे बोलों को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। खंडवा MP से बेबी शालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिक्रा डावर, बीबी आयशा खत्री। धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। बरेली UP से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शुगुन, शारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है अंदाज फिल्म का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पंजाब से

मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, लाला बाजार अल्मोड़ा से बाबा फरहान, खुशबू, संजू, सामिया, आफिया, मुमताज़, अमान, माही, नीलोफर, शन्नू और शप्पू, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, कीर्ति भारती, माधुरी किरण और अनुराग मोहन। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और पंकज उधास की। फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है।

इस गीत के बाद लीजिए पेश है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वरों में हिना फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फरमाइश करता है बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष रामगढ़ कैंटी से महेंद्र मोदी कुलदीप कंवल गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल आर्य जायसवाल बबरी बाजार चंदोली से विजय जायसवाल सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदोली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर राही श्रीमती सरिता गुहाड़कर प्रिंस एकांश गुहाड़कर बदलापुर मुंबई से प्रणीता गुहाड़कर सिद्धांत गुहाड़कर लाडला टुकटुक गुहाड़कर आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलिस गुहाड़कर सुमित गुहाड़कर और कुमारी ध्वनि गुहाड़कर पंजाब से परेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिम्मू एकम दमन और अभिजोत ने। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म का ये गीत।

0: जय हिंद।
1: पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अपनी फरमाइश की फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। कार्यक्रम है गीत निर्झर। श्रोताओं, निजी पेश है कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत। आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रांझू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रमा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक और वीके पुरी। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। हमारे ही सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए पेश है जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गीत निर्जर कार्यक्रम में लीजिए पेश है जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और सोनू निगम की। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध हमें किया है बिराड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम अनास, भाभी सरिता गौतम। जालंधर से संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर जी, कमल साहनी, जोगिंदर पाल मक्कड़, संजय हैदराबादी। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है नुसरत फतेह अली खां के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है कच्चे धागे। फरमाइश करता है राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफो की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली, बीबी निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए कच्चे धागे फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम के समापन में लीजिए पेश है श्रेया घोषाल की आवाज में एक्शन रिप्ले फिल्म का ये गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में शब्द रचना इरशाद कामिल की है। इस गीत के इंतजार में हैं मुंदी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार सोहनी, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, महाराष्ट्र से कमल साहनी, मिसेस पिंकी साहनी, हजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, संजय ढिंग्या, बेगम इफ्जाल, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया ने।

श्रेया घोषाल के गाए एक्शन रिप्ले फिल्म के किसी गीत के साथ ही श्रोताओं आज के परमायशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से ज्योति जाटव को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौ वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाईं। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चंदन दास की गाई इस गजल के साथ।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा।

0: नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
0: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सबरंग कार्यक्रम में लीजिए पेश है केके की आवाज में ये गीत।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जय हिंद। पिछले 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम के अगले पेशकश में आइए सुनते हैं पंकज उधास को।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: कार्यक्रम के समापन में लीजिए सुनिए रोना लैला को।

रूना लैला के गाए इसी नगमे के साथ ही श्रोताओं, आज का हमारा सबरंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मेरठ के मोदीपुर पुरम से ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस परियोजना को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के बीच सहमति बन गई है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए जल्द सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन से नया ट्रैक बिछाया जाएगा जो मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगा। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अपर सचिव रीना जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि NCRTC भी अपना नोडल अधिकारी नियुक्त कर चुका है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उद्देश्य से पौड़ी जिले के पदमपुर मोडाढाक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बहुद्देश्य समाज कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामान्य एवं इलेक्ट्रिक व्हील चेयर सहित विभिन्न सहायक उपकरण प्राप्त लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक रितु खनोड़ी भूषण ने कहा कि सरकार जरूरतमंद व्यक्तियों तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
1: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कोटद्वार में उनका एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, आज कोटद्वार में 110 व्हील चेयर और 100 करीबन नॉर्मल व्हील चेयर और 10 उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी। हम उनका आभार व्यक्त करवाते हैं कि जहां एक तरफ सेना के लिए और देश के लिए अनेक उपकरण वो बना रहे हैं।
0: इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों और जन सुविधा परियोजनाओं के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, सड़क निर्माण, पर्यटन, शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। विशेष गहन

पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी मीडिया और संचार रणनीति की तैयारियों के आकलन के लिए कल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 3 सदस्यीय दल रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण करेगा। आयोग के उपनिदेशक अपूर्व कुमार सिंह के नेतृत्व में आने वाले दल में सहायक निदेशक गौरी एस और वरिष्ठ वीडियो संपादक

0: पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी मीडिया और संचार रणनीति की तैयारियों के आकलन के लिए कल भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 3 सदस्यीय दल रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण करेगा। आयोग के उपनिदेशक अपूर्व कुमार सिंह के नेतृत्व में आने वाले दल में सहायक निदेशक गौरी एस और वरिष्ठ वीडियो संपादक रंजीत श्रीवास्तव शामिल हैं। दल निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेगा। इस दौरान आयोग की नई पहलों की जानकारी भी दी जाएगी और युवा मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने, निर्वाचन साक्षरता को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखने तथा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी जिले के विकास भवन सभागार में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के लगभग 103 किसानों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी रितु कुकरेती जुयाल ने कहा कि रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के अत्याधुनिक प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का आह्वान करते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक आरोपी को उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर कोतवाली में गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक पिस्टल, एक राइफल, 17 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी शस्त्र लाइसेंस और 1 फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, हमारा आज का शीर्षक है मुस्कुराहट।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ज्योति राठौर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है। जो दिल में है वो चेहरे पर नुमाया हुए बगैर नहीं रह पाता, और अगर उस चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो फिर कहना ही क्या। किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराहट चेहरे का नूर है। श्रोताओं, कभी कभी इंसान का दर्द भी मुस्कुराहट बनकर चेहरे पर आ जाता है, तो कभी यही मुस्कुराहट किसी की खुशी की वजह बन जाती है। एक बच्चे की मुस्कुराहट हमारी सारी चिंताओं को कुछ पलों के लिए दूर कर देती है। और श्रोताओं, एक आशिक के लिए उसके महबूब की मुस्कान क्या होती है, ये जरा आप भी सुनिए।

श्रोताओं, मुस्कुराहट में वो जादू है कि इसके होठों पर आते ही तनाव रूठ कर चला जाता है। इसका जादू जल्दी ही आसपास मौजूद सभी लोगों पर छा जाता है और उदास चेहरों पर भी ये हंसी बनकर राज करने लगती है। श्रोताओं, आजकल तनाव भरी इस उबाऊ जिंदगी में यदि दो पल मुस्कुराहट के मिल जाएं तो जिंदगी में सुकून का तड़का लग जाता है और जिंदगी हसीन हो जाती है। मुस्कुराना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसकी वजह ढूंढते रहते हैं। मुस्कुराने का भी भला कोई बहाना होता है? श्रोताओं, आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ईश्वर का वरदान है। उसको क्रोध करके मिटाने की या फिर आंसुओं से धोने की कोशिश ना करें। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना ना करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम और अद्भुत है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे, सारे फूल मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे, तुम फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, आखिर क्यों? फूल कुछ ना बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया, फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर उड़ चला। एक छोटा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ फिर से अपने खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही न जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं। मुझे पता है कि कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही तो मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा, ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट।

या है या फिर हंसते खेलते और गाते मुस्कुराते हुए महोत्सव की भांति आनंद लेने के लिए है। तय आपको करना है क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। श्रोताओं, आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट भी कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप हैं, कल आपकी जगह कोई और होगा। श्रोताओं, अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाएगी। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप खुश होकर कंपनी में घुसते हैं तो देखिएगा सारे कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। श्रोताओं, मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा।

सुर बहार अभिश्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

फौजी भाइयों कार्यक्रम के समापन में लीजिए अब सुनिए गुमराह ख्यारती का लिखा बपी लहरी का संगीत बद्ध किया अलका याग्निक का गाया गीत फिल्म है इंस्पेक्टर किरण।

सैनिकों के लिए अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम लोक सुर। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं शंकर उप्रेती की आवाज में, ये कुमाऊनी लोकगीत।

0: पिछड़ी जून हसन बैठी गे बहसन बैठी गे झम रात पड़ी रोजुमा
1: नरेंद्र सिंह नेगी के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं रमेश नाथ गोस्वामी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

आकाशवाणी खेलमोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक सुर का। और अब कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अनीशा गुसाई का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

श्रोता अनिशा गुसाई के गाए इस गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं विमल पंत का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

तरह लखनऊ में अब गर्म है। नैनीताल को सीजन है गोहित गोपाला ने जो लगर पैर कपड़ा बांध बिस्तरा लखनऊ में अब गर्म है। नैनीताल को सीजन है।

फल फूलों को मौसम है गो, पहाड़ तो अब स्वर्ग है गो, फल फूलों को मौसम है गो, कौतुक आगे साल बिकोती पाकड़ लगी साऊ खेती, कौतुक आगे साल बिकोती पाकड़ लगी साऊ खेती, हिट गोपाल ही साऊ भोला बाद बिसरा घर ने जोला, हिट गोपाल ही साऊ भोला बाद बिसरा घर ने जोला, लखनऊ में अब गर्म है गो नैनीताल को सीजन है गो, लखनऊ में अब गर्म है गो नैनीताल को सीजन है गो, हिट गोपाला ने जोला घर पैर कपड़ा बांध बिस्तरा।

0: जंगल सब कसीरा नदियाँ है रई हरिया है रई जंगल सब कसीरा नदियाँ है रई हिट गोपाला सल कला बांध बिस्तरा घर ने जोला हिट गोपाला सल कला बांध बिस्तरा घर जोला गरम गरम है बोले कल को सीजन है जो लखनऊ में।
1: विमल पंत के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोकसुर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है, अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

रानी खेत अलमोड़ा कोसाणी कतू मिठू कतू चो पानी रानी खेत अलमोड़ा कोसाणी कतू मिठू कतू पानी हरिया है रे जंगल सब कसी रौनक यहाँ है रई हरिया है रे जंगल सब कसी रौनक यहाँ है रई हिट गोपाला सल के ओला बांध बिस्तरा घर ने जोला हिट गोपाला सल के ओला बांध बिस्तरा घर ने जोला लखनऊ में अब गरम है गो नैनीताल को सीजन है गो लखनऊ में अब गरम है गो नैनीताल को सीजन है गो हिट गोपाला ने जोला घर पैर कपड़ा बांध बिस्तरा हिट गोपाला ने जोला घर

मेरी पसंद के चंद गीतों के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी रोशनी वालिया। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, ये नगमे अगर ना हो तो फिल्म अधूरी होती। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की जान होते हैं ये खूबसूरत नगमे। यूँ तो हमने बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी फिल्में देखी हैं और गीत भी सुने हैं। उनमें कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें हम आज भी गुनगुनाना पसंद करते हैं, और उन नगमों से हमें कुछ सीख मिलती है तो कहीं कुछ समझ और बढ़ती है। तो आइए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुछ ऐसे ही गीतों के साथ जो मुझे पसंद हैं। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म गुड्डी से वाणी जयराम की आवाज़ में। गुलजार के बोलों को सुरों में पिरोया है वसंत देसाई ने।

दोस्तों, ये फिल्मी नगमे हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। कुछ गीत हमें संदेश देते हैं तो कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव का आभास कराते हैं। कभी किसी गीत में हमें अपनी पूरी कहानी नजर आती है तो कभी हमारे रिश्तों की मिठास नजर आने लगती है। बहरहाल, इस वक्त आइए सुनते हैं वो गीत जिसमें रिश्तों की प्रगाढ़ता को बखूबी दर्शाया गया है। ये गीत है फिल्म पत्थर के सनम से लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, हमारे हिंदुस्तानी संगीत का कोई सानी नहीं। भले ही आज वेस्टर्न म्यूजिक का बोलबाला हो, फिर भी हिंदुस्तानी संगीत के श्रोताओं में कोई कमी नजर नहीं आती। हमारे हिंदुस्तानी संगीत को तैयार करने में सात सुरों का जो वजूद है तैयार किया जाता है, वह हमारे हिंदुस्तानी संगीत में तो कैसे ना कैसे हमें दीवाना बना देता है। कुछ ऐसा ही एक गीत अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दिल दिया दर्द लिया फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल शकील बदायनी के हैं और धुन बनाई है नौशाद ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज के इस सफ़र में मैं हूँ आपकी हम सफ़र रोशनी। दोस्तों, वक्त बहुत पावरफुल होता है, वक्त पे किया हर काम सही होता है, और इस वक्त की कीमत को समझते हुए हमें वक्त की कद्र करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम एक अनुशासित जीवन जिएं, क्योंकि अनुशासन ही हमें प्रगति पथ पर अग्रसारित करता है। आइए इसी बात पर आपको सुनवाती हूँ फिल्म प्रेम पुजारी का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। देवानंद साहब पर फिल्माए गए इस गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने, और गीत लिखा है नीरज ने।

0: दोस्तों, मेरी पसंद का अगला गीत है फिल्म हम दोनों से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है जयदेव ने। तो आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से युगल गीत का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

दोस्तों, अक्सर हम वादा करते हैं और निभाते भी हैं, परंतु कई दफ़ा हम अपनी बात खत्म करने के लिए झूठे वादे का सहारा ले लेते हैं। नहीं दोस्तों, भूल कर भी ऐसा ना करें। भले ही कुछ वक्त के लिए हम संतुष्ट हो जाएं, हमें तसल्ली हो जाए, लेकिन ये झूठे वादे रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। इसलिए कभी भी वादा करने से पहले ज़रा सोच समझ लें कि वादा पूरा होगा या नहीं, तभी वादा करें। आइए चलते चलते अब हम आपको सुनवाते हैं भरोसा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में पिरोया है रवि ने।

दोस्तों, इस वक्त वक्त का तकाजा है कि अब हम आपसे इजाज़त ले लें। जाने का दिल तो नहीं करता, पर क्या करें, कार्यक्रम का समय हो चला है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल इसी समय इसी जगह पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीजिए स्वीकार रोशनी का प्यार भरा नमस्कार।

मेरी पसंद अभी श्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: अर्पण कार्यक्रम सुनेर सब श्रोताओं के आप लोगों के रेडियो दगड़ी दीपा जोशी नमस्कार स्वागत है आप सब लोगों ना आज के अर्पण कार्यक्रम में दगड़ी रोजा के चारी आप लोगों के दगड़ कुछ बातचीत करूँ कुछ जानकारी आप लोगों के दूर और दगड़ में करूँ आप लोगों को भरपूर मनोरंजन। तो कार्यक्रम में पछा तक हमारा दगड़ बने रहा और हमारे कार्यक्रम आप लोगों को कौस लगूँ जो लोग हमन के पत्रक माध्यम या व्हाट्सएप माध्यम आप लोग जरूर बताया। देखो आज हम सब है पहले ही आप लोगों के लिए आ रही हूँ एक क्षेत्र संकलित बातचीत सुकन्या समृद्धि योजना जो बारे में हमको जानकारी देने लग रही श्री जे एस बोरा अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा मंडल। तो सुनो उन्हें दगड़ करी गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार एक लघु बचत योजना छू जो खात के बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहें लें खोली जा सकू। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चेलियों के भविष्य के सुरक्षित करण और उनर शिक्षा ब्याह खर्चों में मदद लीची चलाई जाने वाली एक छोटी बचत योजना छू। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी पाना लीजिए कार्यक्रम में हमारे घर जुड़ रही अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा मंडल श्री जे एस बोरा जी। सर आपको बहुत बहुत स्वागत छो हमारे कार्यक्रम अर्पण में।
1: धन्यवाद मैडम। यह सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार लागू कर रहा है और यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जो जनवरी 2015 में लागू करे और यो योजना में 10 वर्ष उम्र चेलियों खात खोलनी और वो खात में भारत सरकार बहुत बड़ी ब्याज दी यो चेलियों पढ़ाई और ब्याह लीजिए उन्हें बेहतर भविष्य लीजिए बहुत बड़ी

0: स्कीम से।
1: सर बहुत बड़ी जानकारी आप देश की सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल उम्र तक चले जी को ना उन्होंने जी खोली जाए तो आप जानना चाहूँ कोई और खात के खोल सको जैसे चेली माँ बाप खोल सकें या आम बड़बाजू ओला खोल सकें।
0: यको चेलिया माँ बाप लग खोल सकनी और एक आम या बुबला खोल सकनी। उमे एक कंडीशन छे कि जो चेलिया की उम्र छे वो 10 साल भर कम होनी चाहे और एक परिवार में या दो चेलियों का खात खोल सकनी। अगर दोहर चेल कह की जुड़वा है जाए दो चेल है जानी जुड़वा चेली है जानी तो मैं तीन चेलियों लीजिए ले या खात खोल सकनी।
1: अच्छा आपको बड़ा मतलब जैसे कि कह के पहल संतान कन्या छू और दूसरा संतान मतलब उन्हें दी जुड़वा
0: कन्या है
1: जानी तो तीनों खात
0: खोल सकनी।
1: अंतर दिया चेलिया खोल सकनी।

0: दू चेलियों खात खोल सकनी। अगर दोहर चेल के की जुड़वा है जाए दू चेल हजानी जुड़वा चेली है जानी तो मैं तीन चेलियों लीजिए यो खात खोल सकनी।
1: अच्छा आपको गुड़ा मतलब जैसे कि क्या के पहल संतान कन्या छू और दूसरा संतान मतलब उन्हें दी जुड़वा
0: कन्या है जाने
1: तो तीनों खात खोल
0: तीनों खात खोल
1: अंतर दिया चेलिया खोल सकनी। यो योजना
0: के
1: लाभ कतुक साल तक
0: चेली
1: ले सके?
0: जैसे मैंने पहले बताया योजना लाभ 10 साल उम्र तलक चेली खोल सकनी और यह खातक पूर्व पीरियड हूँ 21 साल तक यह खात चलो और यह खात के 21 साल भबेर पहले ले बंद कर सकनी बशर्ते कि वो चेलिया को ब्याह जाए। वो ब्याह अगर 21 साल उम्र बाद अगर जो उम्र में वो ब्याह हो जाए वो तब यह खात के बंद कर सकनी।
1: 21 साल है पहले कि मान लो कोई चेली इंटर कराना है वो 18 साल में इंटर कर ले तो
0: यो में एक सुविधा आई से जैसे कि मैंने पहले बताया यो स्कीम जो छे चेलियों पढ़ाई और चेड़ियों ब्याह निजी बना रहा है भारत सरकार ने तो पढ़ाई लीजिए उसमें ये कंडीशन छे कि 18 साल के जब चेले है जाए तो उसमें जतुला डबल जमा है 18 साल की उम्र तक उसमें आधो डबल वो निकाल सके पढ़ाई लीजिए।
1: और सर कदुक
0: रुपए खात के खोली जा सके? यो खात के हम 250 रुपए खोल सकनु और पूरे साल भर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकनी। कतु बार पूरे साल में जमा कर सकनी
1: मतलब हर महीने में कर सकनी और
0: हो
1: साल में एक बार
0: कर सकनी? हो यो मैं 250 रुपए कम से कम जमा करन छु और 1.5 लाख अभी ज्यादा जमा न कर सकनी तो उसे कभी जमा कर सको तुम एक महीने में कर लो दो महीने में कर लो दो दिन में कर लो तुम्हें कोई दिक्कत ना।
1: सर एक बात आज जानना चाहूँ अगर कोई एक वित्तीय वर्ष में एक वक्त नहीं कर सका मैंने पूर्वेर करो एडवांस में नहीं कर सक जमा तो ये के नुकसान होलो?
0: नहीं अगर कोई साल अगर तुम्हारे डबल जमा करने में छूट जाए तो मैं कोई दिक्कत है बाद में भय अगले साल वो पिछले साल जो मिनिमम कम से कम जो 250 रुपए जमा करना जो कंडीशन है वो कहें और प्लस 50 रुपए में पेनल्टी पड़े और अगले साल वो खाते दोबारा चालू हो जाए उसमें कोई दिक्कत है बाद में।
1: और यो डबल जो चेक या ड्राफ्ट
0: माध्यम ले
1: कर सकनी या डबल जमा कर
0: सकनी? यो डबल के कैश ले जमा कर सकनी और चेक या ड्राफ्ट वो ले जमा कर सकनी उसमें कोई दिक्कत ना।
1: तो सुकन्या योजना खात खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए?
0: सुकन्या खात खोलने लीजिए केवल एक चेली आधार चाहे जो लोग नाम बहुत है तुम्हारे वो एक आधार होनी चाहे वो जरूरी है और एक जन्म प्रमाण पत्र चाहे और जय माध्यम खोलना रहे वो खाते अभिभावक इजक या बाबू आधार और वो पैन कार्ड वो जरूर चाहे और फोटो चाहे वो गार्जियन एक।
1: तो सर बहुत बड़ी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे कि सुकन्या समृद्धि योजना के खुराना जी के दस्तावेज हम को चाहिए और कतुपटिया खात खोल सकूँ तो आप हमारे श्रोताओं थे कि पहुँचाला के संदेश आप अपने माध्यम उनके देना?
0: नहीं यो जो खाता भारत सरकार ने शुरू कर रहा है यो बहुत बड़ी स्कीम से और मगर बहुत साल है देखने और जाने में देखो कि ये मैं मतलब लोगों में तो रुझान से कि मतलब कह के लोग बताना जरूरत न पड़े केवल हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता रहो उनको तो जानकारी न हो उनको थोड़ा बतौन पड़ो न तरी शहरों में तो मैं ये देखो कि मतलब जैसे ही चल होनी तो जो वही ये बाबू जो लोग होनी वो डाकखान में सब पहले आ जानी कि जैसे ही आधार बना लो पोस्ट ऑफिस में आबेर अपन चेलिया सुकन्या खोलनी ये तो बहुत फायद है कि जैसे कोई अगर अपन चेली लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए साल में जमा कर रहे हैं तो उमें यो में एक चीज आई है मैं वो बतौन भूल पड़ी आप कि यो जो खात खुलल उमें केवल पहले 14 साल ही जमा पैसे जमा कर चाहिए 14 साल तक ही पैसे जमा होनी वो बात 14 बैठी 21 साल तक कोई डबल जमा करने जरूरत नहाते हमें
1: मतलब कोई चेली के पहले साल में तो
0: 14 साल तक उनको डबल जमा करना पड़ो और उसके बाद वो 21 साल तक उसमें डबल जमा न हो केवल उसमें उनको ब्याज मिलन
1: तो जैक
0: खाते 10 साल में खुलो भी वही के लिए 14 साल तक उसमें डबल 24 साल तक जमा होला अगर वही हबेर पहली वही ब्याह जाए या उसको डबलों जरूरत है तो पहली ले जैसे मैंने बताया 18 साल बाद पढ़ाई लीजिए आधु पैसे डबल निकल जानी और 21 साल बाद अगर जब चेलिया को ब्याह जाए तो वक्त पूर्व डबल ले निकाल सकनी और यो मैं मतलब मैं अगर ब्याज बात करूं तो मैं बताना चाहिए आपको पे अगर कोई अपन चेली नाम 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करो एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा करो तो 14 साल में भी 21 लाख रुपए जमा होल खात में और लेकिन उसके जब खात पूरा हो जाए 21 साल बाद तो उसके लगभग लगभग 71 लाख रुपए मिलल और जो यो 71 लाख रुपए हम कैलकुलेट कर रहा ये 71 लाख रुपया आज यह साल जो ब्याज दे

0: छः में जो 8.2% ब्याज दे से हमें उसी अनुसार ये लगभग लगभग 71 लाख रुपए 2021 साल में, तो आप देख सकता ये में लगभग लगभग 50 लाख रुपए ब्याज मिलल केवल। तो अब आप समझ सकता कि अगर म्यास अपन चली लीजिए कोई लोग 1.5 लाख रुपए केवल साल भर जमा करें तो वही जो लोग खर्चे से पढ़ाई से ब्याज से वो आराम लिए अकाउंटेंट कवर हजार, तो ये बहुत बड़ी स्कीम थी, ये एक बेनिफिट से आए। सुकन्या समृद्धि योजना हमार लोगों बीच कतु पॉपुलर छे ये बात है, एक अंदाज लग सकूं कि जो अल्मोड़ा हमार पोस्टल डिवीजन छे जमे दो डिस्ट्रिक्ट होनी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, जमे केवल पोस्ट ऑफिस में लगभग लगभग 78,000 खात छन हमार सुकन्या, और ये अलावा जुया जिलों में जो लगी खात बैंक में ले खुल सकूं तो वहां ले खात होने तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1.5 लाख अबेर ज्यादा चिलियों के खात हमार जो जिलों में होने, तो यह बेर ये एक अंदाज लग सको कि कतु पॉपुलर स्कीम है ये लोगों बीच। और मैं तो सब लोगों से अपील करूँ विशेषकर हमारे जो गांव में रहनी उनको तो जानकारी ना हो, तो जब ले कोई ले अपो घर में या अपो आस पड़ोस में कोई ले चील हूँ तो वही की और सुकन्या खाता बहुत जरूर खोलिया, और यह बहुत बड़ी स्कीम है जो अगर तुम साल 1.5 लाख रुपए ले जमा न कर सकता तो कमला कर ला तो कोई दिक्कत ना आते, तो ब्याज तो तुमको वही रेट ऑल मिलो जो सबको मिलो, तो जो कमजोर परिवार छन जो हमारे गरीब लोग छन हुनर लीजिए बहुत बड़ी स्कीम छे। आपको केवल मासिक कुछ रुपए या सालक जब ले जतु डबल होनी तुम्हारे पास वो चिलिया नामक सुकन्या खातों में जमा करो और आराम से तुम्हारे चिली के आपको पढ़ाई और वही खर्चे आराम से निकल जाए।
1: बहुत है बड़ी जानकारी आपको दे सर, बूंद बूंद बटी घड़ भरी हूँ ये बात को हम समझ जानू, अगर हम थोड़ थोड़ डबल हर साल बचो लो तो हमारे चिली भविष्य बढ़ जाए, हम जे को पढ़ना चाहूँ उच्च शिक्षा देना चाहूँ एक स्वर्णों को पूर्ण करना चाहूँ अपन स्वर्णों को पूर्ण करना चाहूँ अपन चिल के पढ़े लिखे भी जब पढ़े चिल तब आगे बढ़े चिल, यह बात बिल्कुल सार्थक हो। बहुत बड़ी बात आप बताया सर कि हर महस के अपन चिली भविष्य के बेहतर बनाना जी कुछ न कुछ बचत जरूर करना चाहिए, और हर साल जैसा आप बोलो कि अगर 1.5 लाख कोई जमीन नीला कर सको तो कमला कर सको 1,000 कर सको 2,000 अगर नन नन अमाउंट लो जम कर छो तो 14 साल में एक ठुल धनराशि है जय जो हमारे चेलियों को पढ़ाई लिखाई लीजिए उन ब्याज लीजिए बहुत काम आल और ब्याज समेत हमन के वो डबल वापस मिलो, तो बहुत बड़ी बड़ी जानकारी अपुल हमन के दे। आज के अपन कार्यक्रम में हमारे द्वारा जोड़ रची श्री जे एस बोरा जी अधीक्षक डाकघर अल्मोड़ा मंडल, तो सर बहुत बड़ी जानकारी अपुल हमारे श्रोताओं को दे और अमूल्य वक्त अपन हमन के दे लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि भारत सरकार है ये तो बढ़िया स्कीम है लीजिए, आप प्रोग्राम बना और हमारे ग्रामीण जनता को जागरूक करने लीजिए आप यो कार्यक्रम करना रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोले
1: सुकन्या समृद्धि योजना यह विषय पर श्री जी एस बोरा अधीक्षक डांगर अल्मोड़ा मंडल नदगढ़ करी गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत आप लोगों ने सुनी, बड़े उम्मीद करनो कि यो जानकारी आप लोग बहुत फायदा उठाला और जैल ले अपन चली लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना जो योजना छू या मैं खात नहीं खोला सुकन्या समृद्धि तो वो खात का आप लोग जरूर खोला और अपन चिले भविष्य के बेहतर बढ़ाला। कार्यक्रम में आखिर के आप लोगों को मनोरंजन करना और सुनू गीत।

0: देवान कनवाल और रेखा मिश्रा का योगीत आप लोगों ने सुनो और अब सुनो इन्हीं बात।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिना आईएसआई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
4: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान आईएसआई का ही है।
3: जब से आपने आईएसआई के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
4: ये तो है। आईएसआई के निशान वाला सामान लाएं,
3: झगड़ा मिटाएं,
4: विश्वास जगाएं।
0: देखो मन की एक सामाजिक प्राणी छू कोयला काम के कारण लीजिए एक दोहरक जरूरत हमन के पड़े तो हर जागते हमार सहभागिता होना बहुत जरूरी छू। हर मन की मिल बांटवेर कामों के करो तो यह समाज मजबूत बढ़ो और उमें सुदृढ़ता बढ़े। देखो सहभागिता सिद्धांत एक ऐसा वैचारिक अवधारणा है जो यो माने कि कोयला व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया या संगठन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। यह सिद्धांत एक विचारक आदान प्रदान तक सीमित ना बल्कि निर्णय लेने और उसे लागू करने की सामूहिक प्रक्रिया में लोगों के शामिल करने पर जोर दियो। सहभागिता हर जगह जरूरी छू। अब राजनीति और लोकतंत्र के ले लियो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता सिद्धांतक मतलब छो कि सत्ता एक अभिजात वर्ग तक सीमित न रहो। ये में चुनाव में मतदान करण, नियुक्तियों पर चर्चा करण और जनहितक मुद्दों पर सरकारक ध्यान आकर्षित करण शामिल छू। और इसी कहते गड़ियों पढ़ाई करण भगे शिक्षक और छात्र दोनों के सक्रिय भागीदारी है। यह ज्ञान और कौशल में बढ़ोतरी है। कुल मतलब यह छो कि सहभागिता हर जगह जरूरी छू। और अगर जब कक्षा में शिक्षक और छात्रों दोनों की सक्रिय भागीदारी है तो यह

ज्ञान और कौशलक बढ़ोतरी है और कक्षा माहौल ज्यादा प्रभावी बढ़ो। और अपन गगरनक सामुदायिक विकास में अगर हम बात करूँ तो स्थानीय स्तर पर गौनु में सामुदायिक सहभागिता यो ही मतलब छो कि लोगों द्वारा अपन विकासक लिए जी योजना बनून उनके पूर्णकरण और परिणामुक जिम्मेवारी के साझकरण छू। सभी मनखी जब मिलजुल वेर सार्वजनिक कामों में सहभागिता करनी भागीदारी करनी तो प्रशासनिक कमी एल छू कमियों को एल दूर करी जा सकूँ। और सबनक सहभागिता अगर हो तो हर काम आराम है जा। सहभागिता बहुत अठुल महत्व हो जो सामाजिक परिवर्तन के गति दूँ और सामाजिक कामों में सुधार हो और सामाजिक विकास हो। यह लोगों के सशक्तिकरण हो विशेषकर वंचित वर्गों और महिलाओं का। यो हमारे निर्णय लेनक प्रक्रिया के ज़्यादा लोकतांत्रिक और वैध बढ़ो। देखो सामाजिक सहभागिता में मन की समाज समुदाय और सार्वजनिक कामों में बढ़ चढ़ बेर हिस्से लूँ। ये मैं स्वयं सेवा करण और सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हूँ। मतदान करण और अपन आस पड़ोस में समाज में सबनक सहयोग करण शामिल छू। यो सामाजिक जुड़ाव और समरसता के बढ़ावा दूँ। सही बात छू दगड़ियों कि सहभागिता हमार समाज सुदृढ़ होच मजबूत होच तो सहभागिता भावना हर मनखी में जरूर होनी चाहिए।

और अब यह कि तगदगड़ आज के अपन कार्यक्रम संपन्न करना बखत हो लग रहा कार्यक्रम प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत दगड़ियों अपन रेडियो दगड़ी दीपा जोशी का आज कार्यक्रम संपन्न करना अनुमति दी हो अगले का फिर भेंट हुई नमस्कार।

0: अर्पण अभी महिलाएं अपना ये कार्यक्रम सुन रही थीं। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं, अब समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध बोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की

0: याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समय 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राशन कार्ड बनवाने के आय मानकों की समीक्षा की जाएगी। राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश 1 सप्ताह में जारी होगा। चारधाम यात्रा और मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन सतर्क और पौड़ी में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ व संतुलित जीवन का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी से इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मानुशासन, सकारात्मक जीवन शैली तथा जीवन में संतुलन स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में योग कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने और योग को जन जन तक पहुँचाने में योगदान देने का आग्रह किया। प्रदेश में APL राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए निर्धारित आय सीमा की समीक्षा की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित विभागीय बैठक में उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के लिए तय आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव लेकर संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं का नवम्बर माह से लंबित लाभांश 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम राशन कार्ड से समय पर नहीं हटाने और उसके नाम पर राशन लेने के मामलों में रिकवरी तथा कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए जाएंगे।
3: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ, तो वो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन अपात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सत समय में सूचना नहीं नहीं देंगे और विगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में आया कि 39 करोड़ की धनराशि जो है वो विभाग को आजकल में ही प्राप्त होगी और उसे एक हफ्ते के अंदर समान रूप से 13 जनपदों में दिए जाने के निर्देश दिए हैं जिससे हमारे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सहूलियत हो जाएगी।
2: देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दे छाए रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जन समस्याओं और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा करने और विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत और विभागीय अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा और मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर तैनात रहने तथा बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। अगर किसी अपरिहार्य कारण से मुख्यालय छोड़ना आवश्यक हो तो जिलाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपदा या आपातकालीन स्थिति में तत्काल संपर्क स्थापित किया जा सके। विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इन निर्देशों की जानकारी देकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। केदारनाथ धाम क्षेत्र और यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। यात्रा मार्ग पर 240 से अधिक शौचालय संचालित किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के निर्देश में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत धाम और यात्रा मार्ग की नियमित सफाई के लिए 410 पर्यावरण मित्रों और 32 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। वहीं ठोस अवशिष्ट के संग्रहण के लिए 600 से अधिक डस्टबिन स्थापित किए गए हैं। नगर पंचायत केदारनाथ द्वारा दो संस्थाओं के सहयोग से लागू की गई कैरी मी बैग पॉलिसी के तहत श्रद्धालुओं को सूखा कूड़ा वापस लाने के लिए विशेष बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग में स्थापित कम्पैक्टर मशीन से प्रतिदिन औसतन 3 टन से अधिक ठोस अवशिष्ट का वैज्ञानिक से निस्तारण किया जा रहा है। इस बीच कल केदारनाथ धाम में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर परिसर, केदारपुरी और नदी तट के आसपास व्यापक सफाई की गई। इस दौरान पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता कर्मियों और विभिन्न सहयोगी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन व क्लीन यात्रा का संदेश दिया। जिला प्रशासन के अनुसार केदारनाथ धाम की पवित्रता, स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
2: कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित करने और किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से पौड़ी विकास भवन सभागार में खेत बचाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पूरी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती जुयाल ने कहा कि रासायनिक खाद और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का आह्वान करते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास और युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी है। इसके तहत उत्तरकाशी

0: रांची के सीमांत गांव सुखी झाला और बगोरी में योग मनोरंजन खेल प्रतियोगिता ग्राम दर्शन व आपदा प्रबंधन पर विशेष सत्रों का आयोजन कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राशन कार्ड बनवाने के आय मानकों की समीक्षा की जाएगी। राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश एक सप्ताह में जारी होगा। चार धाम यात्रा और मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए टिहरी जिला प्रशासन सतर्क और पौड़ी में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इकबाल सावरी अफजल सावरी के गाए इस नगमे के साथ।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के बाद आइए कार्यक्रम के समापन में आपको सुनवाते हैं नितिन राय अखबार का लिखा ये नगमा। स्वर दिया है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1309वीं कड़ी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का लिखा है।
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके

के साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जान

0: चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनत के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं।

इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम देख हट के यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई।

0: रही है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
1: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
2: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
2: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
2: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
2: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब

0: मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
0: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है।

0: और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
0: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
0: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुना, भय मत करो।
0: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
0: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1309वीं कड़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा के

से प्रसारित किया गया। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

0: वशिष्ठ और दीवान सिंह कनवाल के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और

0: क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा

0: से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुने खेती की बातें। किसान भाई, आज की जानकारी का विषय है सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पूरन सिंह मेहता।
2: किसान भाइयों व बहनों, धान की फसल हमारे खेतों की एक प्रमुख फसल है। धान की पहचान हमारी संस्कृति, सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों से भी गहनता से जुड़ी हुई है। इसे सिंचित व असिंचित दोनों परिस्थितियों में उगाया जाता है। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में खरीफ फसलों में लगभग 54% फसल क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। उत्तराखंड में 280,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसे बोया जाता है और लगभग 5.5 लाख टन पैदावार होती है। धान उत्पादन की दृष्टि से सिंचित क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। धान वाले क्षेत्र संपन्नता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे धान की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धान की खेती के लिए भारी मिट्टी जैसे कि मटियार दोमट वाले खेत अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उसमें नमी संचरित करने की क्षमता अधिक होती है। धान की खेती के लिए बुआई 2 प्रकार से की जाती है। पहले प्रकार में धान के बीजों को सीधे खेतों में बो दिया जाता है। इस विधि में मई द्वितीय पखवाड़े में बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। सीधे खेत में बोने से 1 दिन पूर्व बीज को पानी में भिगो दिया जाता है ताकि उनमें अंकुरण समय पर हो सके, और खराब बीज जो हल्के होते हैं उन्हें पानी से निकाल कर फेंक दिया जाता है ताकि स्वस्थ बीज ही बुआई में उपयोग हो सके। सीधी बुआई विधि में भी किसान 2 प्रकार से बीज बोते हैं, छिड़क कर व पंक्तियों में। पंक्तियों में बुआई करना लाभप्रद होता है क्योंकि पंक्तियों में बुआई करने से लगभग 25% बीज की मात्रा कम लगती है। साथ ही साथ कर्षण क्रियाएं जैसे निराई, गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण में भी आसानी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है रुपाई विधि। इस विधि में पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। नर्सरी में पौधे तैयार हो जाने के उपरांत उन्हें खेत में स्थानांतरित किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सरी बुआई माह मई में की जाती है और पौध रोपण जून अंतिम सप्ताह से जुलाई प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाता है। तराई व मैदानी भागों में मई द्वितीय पखवाड़े से जून प्रथम पखवाड़े तक नर्सरी की बुआई कर सकते हैं और रोपाई जून द्वितीय पखवाड़े से जुलाई माह तक कर सकते हैं। सीधी बुआई हेतु 2 किलोग्राम बीज प्रति नाली की दर से बोया जाता है। रोपाई विधि के लिए नर्सरी डालने हेतु 1.5 किलोग्राम बीज प्रति नाली पर्याप्त होता है। नर्सरी बुआई के लिए खेत की जुताई 2-3 बार करके उसमें सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद 2-3 क्विंटल प्रति नाली की दर से नर्सरी तैयार की जाती है। अंतिम जुताई के समय 1200 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से मिलानी चाहिए, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। सावधानी पूर्वक नर्सरी बेड तैयार हो जाने के उपरांत 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बीजों को बोया जाता है। बीजों को बोने से 1 दिन पूर्व पानी में भिगाया जाता है ताकि उनमें

अंकुरण समय पर हो सके। नर्सरी में अंकुरण होने के लगभग 15 दिन पश्चात हल्की निराई गुड़ाई व खरपतवारों को निकालना चाहिए और सिंचाई का उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि समय समय पर नर्सरी की सिंचाई होती रहे। नर्सरी में जब पौधे 40 से 50 दिन के हो जाते हैं तो उनकी अच्छी तरह खेत में रोपाई की जाती है। रोपाई से 15 दिन पूर्व खेत को 2-3 बार गहरी जुताई करके खुला छोड़ जाता है। दूसरी जुताई के समय 3 क्विंटल प्रति नाली की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। अंतिम जुताई के उपरांत खेत में पानी भर दिया जाता है और पडलर की सहायता से पडलिंग करके उसमें 600 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फॉस्फोरस व 600 ग्राम पोटास प्रति नाली की दर से डालकर खेत को पौध रोपण हेतु तैयार किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में साया कहा जाता है। खेत तैयार हो जाने पर 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में धान के पौधों की रोपाई की जाती है। रोपाई के उपरांत 8-10 दिन तक खेत में पानी नहीं डाला जाता है, जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी में ठीक से अवस्थित हो जाएं। तत्पश्चात खेत में लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर 2-3 बार निराई गुड़ाई व खरपतवार निकालने का कार्य करते रहना चाहिए। धान की फसल जब कल्ले बनने की अवस्था में आ जाती है तो 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति नाली की दर से यूरिया के रूप में छिड़क दी जाती है। फिर बालियां आने पर पुनः 300 ग्राम नाइट्रोजन प्रति नाली की दर से और छिड़क दी जाती है। एक महत्वपूर्ण ध्यान यह देना पड़ता है कि खेत में मृदा का क्षरण न हो और पानी का निकास दूसरे खेत में न हो। इससे उर्वरक की मात्रा बहकर दूसरे खेत में पहुँच जाती है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल उत्पादन का एक प्रमुख बिंदु है किस्मों का चुनाव। वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग परिस्थितियों व जलवायु के अनुरूप किस्में विकसित की हैं। मैदानी भागों हेतु जल्दी पकने वाली किस्में गोविंद, नरेंद्र धान 118, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, पंत शंकर धान 1 इत्यादि हैं। मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्में पंत धान 4, नरेंद्र धान 359, पंत धान 10,

0: कि इनकी पहचान कर इनका उचित निदान करें। धान की फसल पर लगने वाले प्रमुख कीट हैं पत्ती लपेटक कीट। इस कीट की सूंडी पीली रंग की काया और भूरे रंग की सिर वाली होती है। यह पत्तियों को मोड़कर नलीनुमा आकृति बना देती है और उसी के अंदर रहकर पत्ती के हरे पदार्थ को खा जाती है। इस प्रकार सूढ़ियाँ 20-25 दिन के जीवन काल में कई पत्तियाँ खा जाती हैं। खेत में इसके लक्षण दिखाई देने पर कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 50 घुलनशील पाउडर 12 ग्राम दवा प्रति नाली की दर से 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा हानिकारक कीट है गंधीबग। इसकी पहचान इसके दुर्गंध से लगाई जा सकती है। इसकी रोकथाम हेतु मेलाथियोन 5% फेलवल रेट 0.4% धूल 400 ग्राम प्रति नाली के हिसाब से फसल में छिड़काव या बुरकाव करें। तीसरा हानिकारक कीट है तना भेदक। इसकी गिडार मुख्य तने को भेद कर नुकसान पहुंचाती है। तना सूख जाता है। इसके नियंत्रण हेतु कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G 500 ग्राम प्रति नाली की दर से बुरकाव या पिप्रोनिल 5 दवा की 20 मिलीलीटर का छिड़काव करें। चौथा प्रमुख हानिकारक कीट होता है बाली काटने वाला। इसकी सूंडियाँ नुकसानदेह होती हैं। इसका प्रकोप दिखाई देने पर इंडोसल्फान या क्यूनाल्फोस की 30 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करें। कीटों के अलावा व्याधियों का प्रकोप भी फसल में काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। धान की प्रमुख व्याधियाँ हैं झोंका या ब्लास्ट, भूरा धब्बा, खैरा रोग, पर्णसद सड़न, अंगमारी या ब्लाइट आदि। झोंका या ब्लास्ट रोग धान की ज़्यादा आता है। इससे पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बोना चाहिए। खड़ी फसल में रोग निदान हेतु 20 ग्राम कार्बेंडाजम 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। भूरे धब्बे वाली बीमारी खाद व उर्वरकों के कम प्रयोग से भी आती है, अतः फास्फोरस व पोटास वाली खादों का प्रयोग समुचित मात्रा में करें। खड़ी फसल में लक्षण दिखाई देने पर डायथेन M45 दवा 30 ग्राम को 15 लीटर पानी में घोलकर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। खैरा रोग जिंक की कमी के कारण आती है, अतः आधा किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति नाली की दर से मिलाना चाहिए। खड़ी फसल पर लक्षण प्रकट होने पर 100 ग्राम जिंक सल्फेट को 50 ग्राम बुझे हुए चूने में मिलाकर 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली के हिसाब से छिड़काव करें। पर्णछद रोग में पर्णछद सड़ने लगते हैं। इसके लक्षण दिखाई देने पर 20 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। अंगमारी या ब्लास्ट आने पर फसल की पत्तियां झुलसी सी लगती हैं। इसका प्रकोप दिखाई देने पर हेक्साकोनानोल की 40 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति नाली की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों को यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि अच्छी पैदावार हेतु खेत की अच्छी तैयारी, खाद व उर्वरकों का संतुलित उपयोग, बीजों या किस्मों का सही चुनाव, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, कीट व व्याधियों के निदान के अतिरिक्त समय समय पर निराई गुड़ाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः इनका उचित प्रबंधन करना चाहिए।
1: सिंचित धान की वैज्ञानिक खेती। अभी किसान भाई डॉक्टर पूरन सिंह मेहता से इस विषय पर जानकारी ले रहे थे। इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप News on AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले सायंकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। आज की बात का विषय रहेगा नए स्किल्स सीखते रहें। उत्तरायण कार्यक्रम में शाम 5:45 पर चर्चा का विषय रहेगा महारानी लक्ष्मीबाई शहीदी दिवस, और साथ ही सुनिएगा स्वस्थ हृदय के लिए प्राणायाम का महत्व विषय पर जानकारी।

आज अपराह्न 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। सायं 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आज आप सुनेंगे अर्जुन कुमार के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे श्री VSN कैंकर के उर्दू नाटक का हिंदी रूपांतर हम लोग मुजरिम हैं। समय याद रखिएगा आज रात्रि 9:30 और शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 10:30 पर।

भक्ति संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम लेकर आएंगे संध्या 6:41 पर। आज के कलाकार होंगे हरि ओम शरण और विपिन रहेजा। किसान भाइयों के लिए किसान वाणी का समय रहता है संध्या 7:00। आज की बातें में आज हम बात करेंगे जेठी धान की उन्नत खेती और प्रजातियां विषय पर। आज की सलाह होगी मृदा रहित खेती के लाभ विषय पर। खेती बचाओ अभियान, रासायनिक खादों का संतुलित व न्यूनतम प्रयोग विषय पर चर्चा सुनिएगा और साथ ही सुनिएगा फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर महेंद्र सिंह से की गई भेंट वार्ता।

मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सब रसोगा रात्रि 8 बजे और सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले सायंकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के ठीक 2:45 हुए हैं और अब आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के ठीक 2:45 हुए हैं और अब आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

श्रोताओ, उमा देवी महज 13 वर्ष की उम्र में पार्श्व गायिका बनने के सपने लेकर मुंबई भाग गईं। उन्होंने साहसपूर्वक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक नौशाद साहब से संपर्क किया और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे ऑडिशन नहीं देने दिया तो वे खुद को समुद्र में फेंक देंगी। उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर नौशाद साहब ने उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। उमा देवी अभिनेत्री बनने से पहले 40 के दशक के उत्तरार्ध में एक सफल पार्श्व गायिका थीं। फिल्म दर्द का उनका गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का देश भर में सनसनी बन गया था। आइए लुत्फ उठाते हैं इस सदाबहार गीत का।

श्रोता, लता मंगेशकर जैसी नई गायिकाओं के उदय और एक अनुबंध विवाद के कारण उमा देवी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। वे अभिनेता दिलीप कुमार की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं और उन्होंने जिद की कि वे केवल उन्हीं के साथ किसी फिल्म में काम करेंगी। दिलीप कुमार ने उन्हें सन 1950 में बाबुल फिल्म में लिया और उनके चुलबुले और हास्यपूर्ण व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें नाम दिया टुन टुन।

श्रोताओ, टुनटुन की अनूठी शैली, भावपूर्ण चेहरा और हास्य की सटीक समझ उन्हें घर घर में मशहूर करने में कायम रही। 5 दशकों तक उन्होंने अपने करियर में विभिन्न भाषाओं में अलग अलग लगभग 198 फिल्मों में काम किया। उन्होंने प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, नमक हलाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गुरुदत्त, जॉनी वॉकर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि उनका उपनाम टुनटुन आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो आइए चलते चलते सुनवाते हैं आपको टुनटुन और शमशाद बेगम के युगल स्वरों में दिल लगी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का एक ही फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हमारी आज की फनकार थी पार्श्व गायिका और फिल्म अभिनेत्री उमा देवी खत्री, टुन टुन। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

फिल्मी गीतों के इस सफर में आज की आपकी हम सफर, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रोशनी। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, 1957 में रिलीज हुई फिल्म जन्म जन्म के फेरे ऐसी म्यूजिकल हिट हुई कि इसका एक गीत जरा सामने तो आओ छलिए ने तहलका मचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत को लिखने वाले गीतकार ने किस व्यथा में इस गीत की रचना की थी? इस गीत को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। दरअसल

यूं था कि भरद्वाज जी का एक बेटा जिसका नाम श्याम सुंदर व्यास था, वो बहुत ही संवेदनशील लड़का था। एक दिन वो भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उन्हें ढूंढने की लाख कोशिशें की, उसके पोस्टर लगवाए, ज्योतिषी का सहारा लिया, धरती आकाश बादल सब एक कर दिया, किंतु वो नहीं मिला। इससे भरत जी व्यथित हो गए और पुत्र वियोग में उन्होंने इस अमर गीत की रचना कर डाली। गीत तो सुपरहिट हो गया, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आया। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये सदाबहार गीत।

श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत अभिनेत्री शशिकला अभिनीत फिल्म सुजाता से। शशिकला को अपने एक ईर्ष्यालु प्रेमिका, गांव की एक साधारण लड़की, माँ, दादी, दुष्ट चाची, मकान मालकिन और कई तरह के किरदारों में देखा होगा। अभिनय की दुनिया में आने से पहले शशिकला ने मजबूरी में घरों में नौकरानी तक का काम किया था। उनका पूरा नाम शशिकला जावलकर है। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। शशिकला बचपन से ही डांस और अभिनय की शौकीन थी। उन्होंने कई स्टेज शोज किए थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 5 साल की थी। शशिकला ने अभिनय की शुरुआत फिल्म करोड़पति में बाल कलाकार के रूप में की थी। बाद में उन्होंने जीनत, 3 बत्ती 4 रास्ता, चोरी चोरी, नीलकमल, हमजोली, अनुपमा और सरगम

जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। बहरहाल आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं सुजाता फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विस्थापन की पीड़ा केवल वही जानता है जो उसका भुक्त भोगी रह चुका हो। लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे सुनकर अपने लोगों से बिछड़ने और अपनी मिट्टी से उखड़ने के दर्द को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी इस गीत में गायन की ऐसी सुंदर छवि उकेरते हैं कि अर्थपूर्ण बोलों और सुंदर सुरीली धुन वाला ये गीत वैश्विक आकार ले लेता है। ये दुनिया के हर व्यक्ति का गीत बन जाता है जो हर व्यक्ति की मनोदशा को दर्शाता है। फिल्म भाभी के इस गीत को पहले मखमली आवाज़ वाले गायक तलत महमूद से रिकॉर्ड करवाया गया था। दोस्तों, जिस गीत की चर्चा मैं कर रही हूँ, वो गीत साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म भाभी का गीत है, जो उस साल की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। लेकिन आज इस फिल्म को चित्रगुप्त के संगीत में मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के लिए जाना जाता है।

श्रोताओ, आज अगर गुजरे ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात करें तो मुमताज़ का नाम इस लिस्ट में ज़रूर होगा। प्यार इसी मुस्कान वाली इस एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जगह हासिल की। कभी मुमताज़ को फिल्म इंडस्ट्री में महज एक स्टंट हीरोइन के रूप में जाना जाता था, पर एक वक्त वो आया जब फिल्म इंडस्ट्री ने सबसे महंगी एक्ट्रेस का खिताब मुमताज़ को दे दिया। मुमताज ने अपने समय के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वो न्यूकमर्स के साथ काम करने को भी तैयार रहती थीं। अमिताभ बच्चन ने जब अपने करियर की शुरुआत की, उस समय मुमताज सबसे महंगी हीरोइन थी और उन्होंने अमिताभ के साथ भी सहजतापूर्वक काम किया। ये वो दौर था जब वे सेट पर मर्सिडीज जैसी कार लेकर आया करती थीं। दोस्तों, 1970 में एक फिल्म आई थी खिलौना। इस फिल्म के लिए सभी हीरोइनों ने एक्टिंग करने से मना कर दिया। फिल्म में निभाया गया चांद का किरदार कोई हीरोइन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ये एक वैश्या का किरदार था और कोई अपनी

इमेज खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुमताज ने इस रोल के लिए हामी भरी और 1970 में रिलीज हुई खिलौना फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता मुमताज जी ने। मुमताज उस ज़माने में एक एक फिल्म के लिए 10-10 लाख रुपए तक लिया करती थी। तो आइए आनंद लेते हैं खिलौना फिल्म के इस सदाबहार गीत का।

श्रोताओं, यह गीत था हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा और लता, क्षमा कीजिएगा, आशा भोसले का गाया, अनुपमा फिल्म से। आइए चलते चलते बात करते हैं 70 के दशक की। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन की सिनेमाई छवि एक ऐसे एंग्री यंग मैन की रही जो न तो घबराता था और न ही समझौता करता था। उसका बस एक ही उसूल था, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना चले वहां लूट सही। 1973 में फिल्म जंजीर से शुरू हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और साल दर साल अमिताभ बच्चन ने अपने सिनेमाई छवि को भुनाते हुए एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। इन्हीं फिल्मों में सन 1978 की फिल्म त्रिशूल भी शामिल थी। त्रिमूर्ति बैनर तले बनी ये फिल्म 5 मई 1978 को सिनेमाघरों में आई। इसके निर्माता थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स लिखे थे सलीम जावेद की जोड़ी ने। तो आइए आनंद लेते हैं

श्रोताओ, आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। अब इसी के साथ अपने रेडियो सखी रोशनी वालिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

सनम सदाबहार फिल्मी गीत अभिश्रोता फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, इस समय अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपने सायंकालीन सभा में अपराह्न 4 कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 4 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नंदन वंदन अभिनंदन, मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए, लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गाँव है जाटू लोहारी भिवानी में जी। वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं, और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआ टैप्स

0: बोलते हैं उसको, धौलाकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफ़ी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक ऑफिसर बन गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि APS से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए स्कूल में काफ़ी शैतानियाँ क्या करते थे?
0: हाँ यस, मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफ़ी शरारी था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफ़िन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा ये बताइए शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा या वहाँ पर आप एनडीए खड़कवासला वहाँ एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहाँ चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू में जब एनडीए पहुँचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज़ करना, वो डिसिप्लिन कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोस्टमेट्स होते हैं, कुछ हमारे स्क्वाडन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है, तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की अकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट जिसको मैंने कमांड भी किया, और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा

0: सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे, उस टाइम पे तो मतलब नए फोटो थे, तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है, तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है, एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में,
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे, एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके,
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है, और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना, तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए, ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब के स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर मुझे, पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने उस टाइम पर मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर, और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहाँ जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें बुजुर्ग बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन्स होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैम्पियनशिप हमने नहीं जीती, खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और इनसे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दे।

0: सेवाओं में रहते हुए, यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर में जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही, कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चैटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड

0: रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है। और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सकें।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी

0: चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सकें।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्पिरिट कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, कि मैं तो अवसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, क्या रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अवसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था,

0: लेकिन मेरी मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज़ लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइफ्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ जाता
1: है। क्या बात है, यानी कि वो पल जिस
0: वो पल जिसमें उन्होंने डांस
1: किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ। मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं। मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है। जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
1: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा जी। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए पेरिस में फ्रांस के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। श्री मोदी शाम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के सेंट गोबेन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन से मुलाकात की। बैठक में विनिर्माण सामग्री और निर्माण क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सेंट गोबेन की मजबूत उपस्थिति और निवेश देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित कर रहे हैं। श्री मोदी ने लॉजिस्टिक्स कंपनी सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोडल्फ सात से भी मुलाकात की। इस दौरान समुद्री परिवहन, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने भारत में ग्रुप की मजबूत और बढ़ती उपस्थिति का उल्लेख किया। फ्रांस में भवन निर्माण की प्रमुख कंपनी सेंट गोबेन ने कहा है कि भारत उसके लिए महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात का केंद्र बन रहा है। पेरिस में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोनोएद वजीन ने कहा कि चेन्नई के पास कंपनी की एक बड़ी विनिर्माण इकाई न केवल घरेलू मांग के साथ ही खाड़ी देशों, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया को भी निर्यात करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता से काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,317 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। पिछले तीन दिनों में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 और 23 जून को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होंगे। ये दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर हो रहा है। भारत 2026 में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय के अंतर्गत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 9:30 ग्रुप ए के मुकाबले में अमेरिका के अटलांटा में चेकिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। लॉस एंजलिस में रात्रि 12:30 से स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। आज सुबह कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शैलस्वर। इस कार्यक्रम में आज सुनिए लोक गायक अर्जुन कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोता, अर्जुन कुमार का गाया ये झोड़ा स्वरूप का कुमाऊनी लोकगीत अभी आपने सुना। इसी के साथ शैलस्वर कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। श्रोताओ, अब से कुछ देर बाद 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा स्वस्थ हृदय के लिए प्राणायाम का महत्व विषय पर योग शिक्षक डॉक्टर गिरीश अधिकारी सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से प्रेम आर्या की बातचीत। भक्ति संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा 6:41 पर। 7:00 काश्तकार भाई किसानवाणी कार्यक्रम में आज सुनेंगे भेंटवार्ता, सरकार के 12 वर्ष फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर महेंद्र सिंह से प्रमोद पांडे की बातचीत। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:40 पर। रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम में और रात्रि 8:00 सुनिएगा मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। रात्रि 10:00 सुगम संगीत कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा। 9:30 पर नाटक हम लोग मुजरिम हैं हम आपको सुनवाएंगे। सभा के समापन में रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। श्रोताओ, यह था कार्यक्रम विवरण हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का। अब एक नज़र कल की दोनों सभाओं पर। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा का आरंभ होगा 5:55 पर। सुबह 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम में विचार प्रसारित किया जाएगा लियो टॉलस्टॉय का, शीर्षक होगा नजरिया। आराधना कार्यक्रम के तहत भक्ति गीत प्रसारित होंगे 6:10 पर। आज की बात हम करते हैं 6:40 पर। विविधा आप सुनते हैं 6:50 पर। सुबह 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान पाठ का 129वां अंक प्रसारित किया जाएगा। लोक मंजरी कार्यक्रम में कल सुबह 7:30 पर सुनिएगा प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुनेंगे 7:50 पर। सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत निर्जरम आपके लिए रोजाना की तरह लेकर रहेंगे। सबरंग कार्यक्रम होगा 10:05 पर। 10:35 पर सुरबहार कार्यक्रम में सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल सुबह 11:00 सैनिकों के लिए कार्यक्रम में। मध्याह्न 12:00 मेरी पसंद कार्यक्रम में। 2:45 पर फिल्म संगीत एक ही फनकार और सभा के समापन में अपराहन 3:00 सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रमों के तहत। लोकसुर कार्यक्रम आप सुनते हैं 11:30 पर। 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में महिलाएं कल सुनेंगी क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, विषय होगा यौन हिंसा रोकथाम में कानून और समाज की जिम्मेदारी। विषय पर श्रीमती भावना जोशी अधिवक्ता अल्मोड़ा से प्रीति जाठव की बातचीत। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा 1:15 पर। 1:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1310वीं कड़ी प्रसारित होगी। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनते हैं अपराहन 2:00। काश्तकार भाई खेती की बातें कार्यक्रम में 2:30 पर कल सुनेंगे वार्ता मक्का की फसल की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजेश कुमार। श्रोताओ, हमारी कल की सायंकालीन सभा में शाम 5:10 पर सुनिएगा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली से सजीव प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कल शाम समय याद रखिएगा 5:10। सभा के शुरुआत में कल शाम 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम शैलस्वर, कलाकार होंगे नारायणी धर्मसत्तू और साथी। उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता साथी सुनते हैं 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा प्रसारित की जाएगी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। विषय एक बार फिर सुन लें संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भक्ति संगीत कार्यक्रम रोजाना की तरह सुनिएगा 6:41 पर। 7:00 काश्तकार भाई और ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। कल सुनिएगा चर्चा फसलों में नाश जीवी प्रबंधन। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे कल संध्या 7:40 पर। कल रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 9:30 पर फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपके अनुरोध पर के तहत। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस होगा रात्रि 8:00। कल रात्रि 10:00 सुनिएगा सुगम संगीत। श्रोताओ, ये था कार्यक्रम विवरण हमारे आज के शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।
हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी रेडियो मित्र राशिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी के आज के अंक में। दोस्तों आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल कि क्या आप आज के दौर में कोई एक ऐसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहेंगे जो पिछले 5 साल से अपडेट ना हुआ हो? शायद नहीं, क्योंकि दोस्तों बिना अपडेट टेक्नोलॉजी भी पीछे छूट जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा करियर या हम पीछे छूट जाएंगे अगर हमने खुद को समय से अपडेट नहीं किया। और समय से अपडेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम नई नई स्किल्स सीखते रहें। दोस्तों आज के इस कॉम्पिटिटिव समय में जितनी ज़रूरी डिग्रीज़ हैं उतना ही ज़रूरी है कि हम बदलते समय के साथ

0: नई नई स्किल्स को सीखें। तो दोस्तों, इसी विषय में आइए जानते हैं हमारे युवा साथियों से कि उनकी नज़र में नई स्किल्स को सीखते रहना क्यों ज़रूरी है।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरे नज़रिए में अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप बढ़ना भी बंद कर देते हैं। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो चीज़ें आज नई हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद वो पुरानी हो जाएं। इसलिए सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर ही डिपेंडेंट रहना काफ़ी नहीं है। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। सबसे पहले लर्निंग को एक हैबिट बनाइए, बर्डन नहीं। हर दिन 20-30 मिनट किसी नई चीज़ के लिए निकालिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ कोर्स करें, छोटी छोटी शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना या किसी फॉरेन लैंग्वेज के बेसिक वर्ड सीखना। आप बुक्स पढ़ने की आदत डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती, सोचने का नया नज़रिया देती। अगर आपको साइंस पसंद है तो उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़िए। अगर आपको राइटिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, कोडिंग कुछ भी पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग या डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में खुद को और डेवलप करिए। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बार ज़रूर कहती हूँ कि हर चीज़ में परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी एक फील्ड में खुद को एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि आज के समय में सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और डिजिटल लिटरेसी जैसे स्किल्स होना उतना ही ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, नए एक्सपीरियंस लीजिए और गलती करने से मत डरिए, क्योंकि हर गलती भी एक शिक्षा ही होती है। देखिए दोस्तों, डिग्री आपको एक दरवाज़ा खोलकर दे देगी, लेकिन स्किल्स आपको उस दरवाजे के आगे बढ़ने की ताकत देंगी। और एक बात और कि कभी ये मत सोचिए कि अब सीखने की उम्र निकल गई है, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही ज़िंदगी भर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।
2: नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ एकेडमिक्स या अच्छे मार्क्स ही काफ़ी नहीं है। पढ़ाई ज़रूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज का वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। जब हम फ्यूचर में किसी कॉलेज एडमिशन या इंटर्नशिप या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि हमारे मार्क्स कितने हैं, ये भी देखा जाता है कि हमारे पास और कौन कौन सी स्किल्स हैं। जो स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, डिज़ाइनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट या कोई नई लैंग्वेज सीखते रहते हैं, उन्हें अक्सर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वह एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना ही गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नई स्किल से खुद को बेटर बनाना गोल होना चाहिए। आज बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। हर नई स्किल हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, मार्क्स कैन ओपन अ डोर, बट स्किल्स हेल्प्स अस वॉक कॉन्फिडेंटली थ्रू दैट डोर। अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हों, तो अक्सर वही स्टूडेंट आगे निकलता है जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। इसलिए हर स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के साथ साथ हर साल कम से कम एक नई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, चाहे वो न्यू लैंग्वेज हो, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, AI टूल्स, राइटिंग, डिजिटल लिटरेसी या कोई स्पेसिफिक फील्ड का सर्टिफिकेशन कोर्स हो। फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। तो दोस्तों, डोंट जस्ट स्टडी फॉर एग्जाम्स, स्टडी टू अपग्रेड योर सेल्फ, बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड योर स्किल्स आर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। थैंक यू।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों के विचार कि नई स्किल्स सीखते रहना क्यों ज़रूरी है। आशा करते हैं आप भी आगे बढ़ने के लिए नई नई स्किल्स सीखेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं रोजगार समाचार की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक व अन्य 611 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने जूनियर टेलीकॉम के 100 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर व अन्य 34 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hslvizag.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सहायक अवर निरीक्षक के 22 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कंसंट्रेटर के 70 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर विजिट कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने जनरल मैनेजर के 15 पदों पर रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।

दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज के इतिहास की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम ले चलते हैं आपको आज के इतिहास की ओर और जानते हैं क्यों है आज का दिन खास इतिहास के पन्नों में। दोस्तों जब भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र ज़रूर होता है। दोनों हाथों में तलवार, मुँह में घोड़े की लगाम और पीठ पर अपने बेटे को बांधकर जब लक्ष्मीबाई मैदान में उतरी तो अंग्रेजों ने साक्षात चंडी रूप देखा। अंग्रेजों को लुभा लेते हुए आज ही के दिन वर्ष 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1842 में 14 साल की उम्र में उनका विवाह राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। 18 जून वर्ष 1980 को लंदन के इम्पीरियल कॉलेज में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी ने एक कारनामा कर दिखाया था। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग की तरफ से उन्हें 13 अंकों की दो संख्याएं दी गई थी। शकुंतला देवी ने इन संख्याओं को बिना किसी कैलकुलेटर या बिना किसी पेन कॉपी की मदद से 28 सेकंड के अंदर गुणा करके उनका एकदम सही जवाब दे दिया। उनके इस कारनामे से सभी लोग दंग रह गए और साल 1982 में उनके इस कारनामे को गिनीज बुक में जगह दी गई। दोस्तों आज गोवा का क्रांति दिवस है। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, लेकिन 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगालियों पर का कब्जा रहा था। गोवा की आज़ादी के लिए एक लंबा आंदोलन चला जिसकी आज ही के दिन वर्ष 1946 में नींव रखी गई थी।

इस दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा जाकर वहां के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। हजारों लोगों ने गोवा की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1983 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सैली राइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली वे पहली अमेरिकी महिला थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

1983 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सैली राइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली वे पहली अमेरिकी महिला थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का इतिहास। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए करते हैं आपका मनोरंजन एक गीत के साथ।

दोस्तों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और बताते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर, साथ ही सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम। दोस्तों हमारा कल का पूछा गया प्रश्न था, भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे, जिसका सही उत्तर है भारत के प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। और सही उत्तर लिख भेजने वाले हमारे दोस्तों के नाम हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी जगदीश जौहरी, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, मायरा सुरेशे, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा, पूजा परियार। दोस्तों इसी क्रम में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इसका सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। सही उत्तर लिख भेजने वाले दोस्तों के नाम कल इसी कार्यक्रम में उद्घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त राशिका को अनुमति दीजिए आज के युवाणी कार्यक्रम से। नमस्कार।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सब श्रोता दगड़ियों कमी आपू दगड़ी प्रेमक नमस्कार। श्रोताओं, महारानी लक्ष्मीबाई शहादत दिवस बलिदान दिवस हर साल 18 जून हूँ मनाई जा। यह दिन 1858 में भारतक पहल स्वतंत्रता संग्रामक दौरान उनूल ग्वालियर में ब्रिटिश सेना बटी लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपन प्राण न्योछावर कर दी। भारतक स्वतंत्रता संग्रामक इतिहास में कुछ यश नाम छन जो साहस देशभक्ति और बलिदानक प्रतीक बनी हुई छन। उनमें सबसे प्रमुख नाम रानी लक्ष्मीबाई के छू। हर वर्ष 18 जून हूँ रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मनाई जा। यह दिन उ अदम्य साहस और वीरता की याद दिलों जब एक युवा रानी अंग्रेजी हुकूमतक समणी उनका झुकण के लिए जी मजबूर कर दे और अपन मातृभूमि की रक्षा के लिए जी अपन प्राणों को बलिदान दे। हमका याद दिलों कि यह एक यश 29 वर्षीय युवा वीरांगनाल दुनिया के सबसे ठुल ब्रिटिश साम्राज्य के नींव का हिल दे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1800

28 हूँ, वाराणसी एक मराठी परिवार में हो। उन्होंने बचपनों का नाम मणिकर्णिका छी और प्यार बटी मनखी उ मनु बुलू छी। साल 1842 में उनर ब्याह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर दगाड़ हो। वीक बाद उ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। साल 1851 में रानील एक भौगा जन्म दे, लेकिन मात्र 4 महीनक उम्र में उ बालकक निधन हो गई। तब राजा गंगाधर राव वीक सदमे के बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनर स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ते जान लागो। और अपन मृत्यु हुए पहले उन्होंने एक अपन रिश्तेदारक कोई नैनतिन के गोद ले, जनर नाम उन्होंने दामोदर राव धरो। 1853 में राजा के निधनक बाद क्रूर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अपन हड़प नीति के तहत दामोदर राव के झांसी के उत्तराधिकारी मानन बट को इनकार कर दे और झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलोणक ऐलान कर दे। तब महलों में रोने वाल रानी गरज उठी। जब 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भड़को तो रानी लक्ष्मीबाई मध्य भारत में विद्रोह का एक मुख्य चेहरा बनी। उन्होंने न केवल पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए एक फौज तैयार करी, जमें उन्होंने हम सकल झलकारी बाई ले शामिल रही। जब अंग्रेजों गद्दारों की मदद जब किले के एक फाटक के खोल दे और झांसी की पतनताई निश्चित दिखने लागो, तब रानी लक्ष्मीबाई अपन 12 सालक दत्तक पुत्र दामोदर राव के अपन पुठ में बैठ भेर और अपन वफादार घोड़ बादल पर सवार हबीर किले के सबसे ऊंची दीवार में छलांग लग दे। 1858 कोटाक सराय ग्वालियर में उ बखत रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के सैनिक वस्त्र पहन भेर और द्वि हाथों में तलवार लिपेर अंग्रेजों पर बिजली की भांति टूट पड़ी। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों सैनिकों के गाजर मुअक तारी काट दे। तब वीक बादा दम तोड़न हबे पहली रानी केवल एक ही अंतिम इच्छा छी कि जो मेर साहु छू वो अंग्रेजों के हाथ नी लागण छेन। साधु और उनार सैनिकुल तुरंत अपन कुटियाक जो लकाड़ छी घास फूस छी वीक चिता बड़ा और उमय मुखाग्नि दिभेर। 18 जून 1858 हूँ भारतक एक यश महान चेली जो इतिहास में अमर है गई। बुंदेले हर बोलोक मुह हमन सुनी कहानी छी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी छी। यो शब्द आज ले हमार कानों में ऊनी तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल और वीरता की याद करते हुए मन आज ले श्रद्धा बटी झुक जा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन, जन,

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगिल अब आपको सुनाने लग रहा है गढ़वाली लोकगीत नरेंद्र सिंह नेगी स्वर में।

श्रोता आप सुन लग रहा है गढ़वाल लोकगीत नरेंद्र सिंह नेगी स्वर में कार्यक्रम अगिल क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता स्वस्थ हृदय के लिए जी प्राणायाम विषय पर शोभन सिंह जीना परिसर अलमड़ में योग शिक्षक डॉक्टर गिरीश अधिकारी द गढ़ करी गई यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।

0: इनर्दगढ़ बात कर रहा हूँ, नागरी प्रेम आर्या।
1: श्रोताओं, आज हम पहुंचे हैं शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में। हमारी मुलाकात हो रही है यहाँ योग शिक्षक श्री गिरीश अधिकारी जी से। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम क्या है, इसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, कैसे हमको सुरक्षित रख सकता है। तो अधिकारी जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार
1: जी। सर, हमारे सुनने वाले श्रोताओं को आप बताएं कि जो प्राणायाम है क्या?
2: प्राणायाम जैसे कि नाम से विदित, प्राण धनायाम अर्थात जो हमारे शरीर में प्राण के प्रभाव को बढ़ाता है। जब प्राण का प्रभाव बढ़ेगा तो हमारा शरीर दिनों दिन हल्का होता चला जाएगा।
1: जी, प्राणायाम हमारे हृदय को कैसे सुरक्षित रख सकता है और क्या क्या प्राणायाम है और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं?
2: प्राणायाम हमारे हृदय को सुरक्षित रख सकता है क्योंकि प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों और हृदय पर पड़ता है, जिससे हमारे हृदय संबंधी अनेकों प्रकार के रोग दूर होते हैं। प्राणायामों की बात करें तो प्राणायाम मुख्यतः हठयोगी ग्रंथों में जो मिलते हैं, 8 प्रकार के प्राणायामों की बात करी गई है। जैसे भ्रस्तिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, सूर्यभेदि, शीतली, सितकारी, प्लावनी, मूर्छा, ये सारे प्राणायाम हैं जो हृदय रोग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में ही इन प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए।
1: जी अधिकारी जी, हृदय स्वास्थ्य और प्राणायाम के बीच क्या संबंध है और हमारे दिल को कैसे सुरक्षित रख सकता है?
2: हृदय स्वास्थ्य और प्राणायाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ हृदय ही क्या करता है, हृदय से हमारे संपूर्ण शरीर की 72,000 नाड़ियाँ संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग तक पहुँची है। अगर हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे संपूर्ण शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? हृदय से जितने भी नस नाड़ियाँ गई है वो सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक के जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हृदय से जितने भी निकलने वाले जो नस नाड़ियाँ हैं वो प्रवाहित होकर वहाँ पर रक्त के संचार को बढ़ा देती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है।
1: जी, एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने दिल को मजबूत रखने के लिए रोज कम से कम कितने और कितने समय अवधि प्राणायाम करना चाहिए?
2: एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने दिल को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से शुरुआत, जब वो प्राणायाम की शुरुआत कर रहा है, किसी एक प्राणायाम को 8 से 10 बार नियमित रूप से करें। एक प्राणायाम को ऐसे अगर आप 4 प्राणायाम कर रहे तो कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा आप आधे घंटे 1 घंटे तक ले जा सकते हैं।
1: अच्छा, प्राणायाम करते समय शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, इसका हमारे दिल की मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है?
2: जैसे कि प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, निश्चित तौर पर जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा तो हमारे शरीर की केवल शारीरिक रोग ही नहीं, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग, सामाजिक रोग, सभी रोग दूर होंगे। और निश्चित तौर पर हमारे जब हम प्राणवायु भीतर लेते हैं, ऑक्सीजन जहाँ भरपूर मात्रा में भीतर लेते हैं, तो लंग्स जो हमारे फेफड़े, फेफड़ों में जो असंख्य जो छिद्र, वो छिद्रों से फिल्टर होते हुए जो ऑक्सीजन हमारे हृदय पर प्रवेश करती है, हृदय से प्रत्येक नाड़ी में प्रवेश करती है, तो निश्चित तौर पर हमारे नाड़ियों के साथ साथ हमारे जितने भी मांसपेशियाँ वो भी स्वस्थ होती है।
1: जी अधिकारी जी, हम देख रहे हैं उच्च रक्तचाप दिल की बीमारियों का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
2: उच्च रक्तचाप दिल की बीमारियों का मुख्य कारण हमारा गलत खान पान हो सकता है, गलत वर्क हो सकता है और किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम न करना हो सकता है। जिसके लिए अगर मैं बात करूँ प्राणायाम की, तो किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में ही कुछ उच्च रक्तचाप के लिए कुछ विशेष प्राणायाम बताए गए, जैसे कि शीतली प्राणायाम, सितकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदि प्राणायाम। ये सारे प्राणायाम ठंडक देने वाले हैं क्योंकि जब उच्च रक्तचाप बढ़ेगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी, जिससे कि अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जब हम ठंडक देने वाले प्राणायाम करते तो तुरंत ही उसका जो रक्तचाप है वो सामान्य आ जाता है।
1: जी, हृदय रोगियों के लिए कौन कौन से प्राणायाम सबसे सुरक्षित और फायदेमंद हो सकते हैं?
2: हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली सितकारी प्राणायाम, ऐसे प्राणायाम है जिनमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं होती और सरल और सहज प्राणायाम है। इनके नियमित अभ्यास से निश्चित तौर पर हमारा हृदय मजबूत हो सकता है।
1: जी अधिकारी जी, प्राणायाम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: प्राणायाम करते समय हमें सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि हमें कम से कम खाना खाए हुए 3 से 3.5 घंटे का गैप हो।
1: जी।
2: सबसे अच्छा जो समय है प्राणायाम के लिए वह ब्रह्म मुहूर्त का है, प्रातः सूर्योदय के समय का। तो उस समय अगर हम प्राणायाम खाली पेट रहता है और उस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं।
1: आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं में हृदय रोग, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं और खराब जीवन शैली और काम के तनाव के बीच प्राणायाम, इसको कैसे बचाया जा सकता है?
2: जिस प्रकार आजकल की जो लाइफस्टाइल है, अनेक प्रकार के हार्ट संबंधी रोग हो रहे हैं और इन सबके बचने के लिए प्राणायाम रामबाण का कार्य करता है।

0: तौर पर सर्वप्रथम हमें अपनी जीवनचर्या को सही करना होगा या दिनचर्या को सही करना होगा। प्रातःकाल हमें सूर्योदय के साथ साथ उठना और प्रातःकाल हमें भरपूर पेट भोजन करना चाहिए और दिन में हमें हल्का भोजन करना चाहिए। शाम को हमें एकदम लिक्विड फॉर्म में भोजन लेना चाहिए। जब इस प्रकार का हम नियमित रूप से भोजन करेंगे और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं का ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और साथ ही जब प्राणायाम करेंगे तो उसके लाभ दो गुने हो जाएंगे।
1: प्राणायाम में पानी जल की क्या भूमिका है?
0: प्राणायाम में जल की भूमिका की बात करें तो प्राणायाम में जल का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं। हाँ, प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राणायाम के लगातार अभ्यास लंबे अभ्यास से प्लावनी प्राणायाम नामक एक प्राणायाम है, जिसके नियमित अभ्यास अगर हम लगातार उसको 6 से 7 साल भर करें तो उसके बाद योग साधक अगर पानी में पालती मारकर बैठता है तो वह ऊपर तैरने लगता है, न कि डूबता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी साधक पानी में जाएगा तो डूब जाएगा, 1-2 मिनट में वो पानी में डूबने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से प्राणायाम को इतना उच्च बनाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि साधक पानी में बैठ रहा है और बैठने के बाद उस पर डूबने के बजाय वो ऊपर ऊपर ही तैर रहा है।
1: अच्छा, कोई भी हृदय रोगी है उसको क्या प्राणायाम करने चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बताएं।
0: कोई भी हृदय रोगी है उसे अनुलोम विलोम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम कर शीतकारी प्राणायाम। भ्रस्तिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रस्तिका प्राणायाम में हमारे बहुत तेजी से लंग्स और हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति तुरंत ही गर्मी देने वाला होता है और हमारे हार्ट पर बहुत तेजी से प्रेशर पड़ता है। पहले हम शुरुआत में अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम करें, उच्चाय प्राणायाम पर धीरे धीरे, जब इन प्राणायामों में हमें मजबूती मिल जाती है, दृढ़ता इनमें आ जाती है, उसके बाद हम धीरे धीरे भ्रस्तिका और कपालभाति जैसे प्राणायामों का अभ्यास भी कर सकते हैं।
1: जी अधिकारी जी, प्राणायाम करते समय जानकारी के अभाव में कुछ लोग गलतियां करते हैं तो क्या उन्हें करना चाहिए?
0: प्राणायाम करना चाहिए, हाँ, निश्चित तौर पर जानकारी के अभाव में जब योग साधक प्राणायाम करता है, जैसे कोई उच्च रक्तचाप का साधक है और वो कपालभाति कर देता है तो निश्चित तौर पर उसे उसके नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्राणायाम हम करते हैं तो किसी अच्छे योग शिक्षक से, या फिर आजकल तो बहुत सारे YouTube चैनल या फिर अनेक प्रकार के सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे ऐसी नॉलेज मिल जाती है कि हमें किस रोग के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा नहीं प्राणायाम करना चाहिए, उसके आधार पर हम जान कर पहचान कर प्राणायामों को अभ्यास हमें करना चाहिए।
1: आप योग शिक्षक होने के नाते शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में बच्चों को योग दे रहे हैं, कितने सालों से आप योगा करते आ रहे हैं?
0: लगभग मैं 10 साल से योग करते आ रहा हूं और लगभग मैं यहां पर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में 6 साल से यहां पर योग की शिक्षा दे रहा हूं।
1: इस दौर में जब हमारे खान पान और जो हमारी जीवन शैली है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित है और जहाँ बीमारियों के बारे में देखा जाए तो काफ़ी सारी बीमारियाँ आज के समय में युवाओं में, बुजुर्गों में, हर वर्ग के लोगों में देखी जा रही है, इसको बचाने का प्राणायाम करके क्या अच्छा तरीका हो सकता है?
0: बिल्कुल, जैसे कि आजकल प्रत्येक साधक के, चाहे उसके जॉब हो, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है, फिजिकल वर्क नहीं रह गया घर में, क्योंकि इतनी भौतिकवाद हमारे घर परिवार हो चुके हैं कि घर में अगर कपड़े भी धोने हैं तो, क्योंकि कपड़े धोने से अनेक प्रकार के हमारे एक्सरसाइज हो जाती थी, चाहे मल पास करने की बात, पहले से हम मल पास इंडियन टॉयलेट में करते तो हमारे पूरे शरीर की एक्सरसाइज, हमारे स्पाइन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज, हमारे काफ मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आजकल वही जो वेस्टर्न टॉयलेट आएगी तो निश्चित तौर पर अनेक प्रकार के उसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में अगर हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें, निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं।
1: सुनने वाले श्रोताओं को आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे वो अपने स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, इसके बारे में बताएं?
0: जितने भी योग साधक जान रहे हैं, सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर नियमित रूप से अपने जीवन में योग को अपनाएं, कम से कम आधा घंटा अपने जीवन को दें। निश्चित तौर पर अगर आप लगातार केवल 15 दिन भी अगर आधा घंटा अपने शरीर को देते हैं, प्रातःकाल सायंकाल दिन में जब भी आपको समय मिलता है, आप 15 दिन में ही अपने शरीर में अनेक प्रकार के चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें आपको शरीर का हल्कापन मिलेगा, जिसमें आपके घर में जो बहुत ज़्यादा पारिवारिक जो विवाद होते हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त योग के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं विगत 6 वर्ष से कर रहा हूँ, तो मैं पारिवारिक लोगों को भी कराता हूँ, मैं विद्यार्थियों को भी कराता हूँ, मैं सामाजिक लोगों को भी, तो निश्चित तौर वो लोग बताते हैं कि हाँ, हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग तो दूर हुए, उसके साथ साथ ही हमारे घर का जो माहौल है वो भी आनंदमय होने लग गया है।
1: निश्चित तौर पर आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में लोगों को अपना योग प्रशिक्षण दे रहे हैं, आप दिनों दिन उन्नति करें, आप उत्तरोत्तर दिशा की तरफ तरक्की करें। आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी।
2: श्रोताओ अल्लाह प्रसन्न लग्राचा क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता स्वस्थ हृदय के लिए प्राणायामक महत्व विषय पर योग शिक्षक डॉक्टर गिरीश अधिकारी शोभन सिंह जी ना परिसर अलमाड़ दगड़ प्रेम आर्या की ओर बातचीत।

0: स्वतः आपण लाग राहायच्या यो कुमाऊनी लोकगीत गायिकाची लता पांडे।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: श्रोता कार्यक्रम में अगिल आपको सुनान लाग रिया गोकुल बिष्ट और उनार दगुड़ुंग स्वर में यो लोकगीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: और श्रोताओं, आप जने जने आपको सुनान लग रही है गढ़वाल लोकगीत समूह स्वर में गई हुई।

श्रोताओं आप सुनने लग रहा है गढ़वाल लोकगीत समूह स्वर में गाई हुई और यही गढ़वाल लोकगीत देखकर हमारा आज उत्तरायण कार्यक्रम इन लेकर संपन्न हो आप तक आप हो एक नई अंक में फिर भेंट हुई और अब थोड़ी देर बाद आप सुनला उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार जो हमारे देहरादून केंद्र बट को रिले हाल आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए एलमी का आज्ञा दियो नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में अगला प्रसारण होगा हमारे देहरादून केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सभी तैयारी पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा। और बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल कर्मियों को राहत देने और उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 98% से अधिक होने के आधार पर यह फैसला लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कट ऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 2024 करने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े प्रस्ताव के तहत यात्रा में संचालित घोड़ा खच्चरों के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
2: प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे मेहनत और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और किसी भी अफवाह या भ्रम से बचें।
4: हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस महानिदेशक, अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को सम्पन्न करवाएं।
2: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण, उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यालय पूर्व सैनिकों और परिषद के बीच समन्वय स्थापित करने तथा जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने का केंद्र बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नाजिश कलीम की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। सचिव ने पैनल अधिवक्ताओं को पात्र और जरूरतमंद लोगों को समयबद्ध, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अधिवक्ताओं को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ करना चाहिए। बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 22 प्रशिक्षण बेंचों के माध्यम से 440 युवाओं को विभिन्न रोजगार परक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्थान के निदेशक डॉ. जितेंद्र तिवारी ने बताया कि बागेश्वर, कपकोट, गरुण और शामा समेत जिले के कई क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है।
5: जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में अभी हमारे दो जो जॉब रोल हैं, एक तो टेलरिंग का, दूसरा है असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का, हम अपने संस्थान के कैंपस में ही चला रहे हैं। इसमें डिफरेंट जॉब रोल के अकॉर्डिंग हमारे पूरे जिले में काम चल रहे हैं और यहाँ वर्तमान में दो बैच है जिसमें से अलग अलग मॉड्यूल और शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी तीनों ब्लॉक में हमारे एट प्रेजेंट अभी 30 बैचेस में ट्रेनिंग चल रही है जिसमें ब्यूटी वेलनेस का भी ट्रेनिंग है, अपन क्राफ्ट का भी है, स्टिचिंग का भी है, अपैरल सेक्टर्स में भी है। इस तरह से पूरे जिले में डिफरेंट जॉब रोल पर, डिफरेंट लेवल पर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित हो रही हैं।
2: प्रशिक्षण ले रहे युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। फैशन डिजाइनिंग के प्रशिक्षणार्थी जानकी दानू का कहना है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे अपना बुटीक खोलेंगी।
6: मैं जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर में सिलाई सीखती हूँ और आज तक मैंने सूट की कटिंग, सिलाई और कंप्लीट सूट बनाना मैंने सीख लिया है और यहाँ मैम भी बहुत अच्छे से हमें सिखाते हैं और हमें यहाँ सीख के बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम ऐसे सीखते रहेंगे और अपना बुटीक खोलेंगे और जिसमें हम लोगों को भी काम दे सकते हैं और अपना खुद का रोजगार भी कर सकते हैं।
2: चंपावत जिले में 20 जून तक जन कल्याण मेलों और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज लोहाघाट नगर पालिका परिसर

0: बक्सर में आयोजित जन कल्याण शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी कवींद्र रावत ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
1: केंद्र सरकार एवं उत्तराखंड शासन के जो भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में शिविर का आयोजन करना था, तो इसमें हमने आज विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और कई लोग भी अपने लाभ उठा रहे हैं इस कार्यक्रम शिविर का, और इसमें कई प्रकार की जो नई नई योजनाएं हैं उनको जानकारी दी जा रही है।
0: शिविर में आए भैरव दत्त राय ने सरकार की इस पहल की सराहना की।
2: मेला लगाया गया है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आई हैं और आयुर्वेदिक विभाग के लोग भी इसमें, होम्योपैथी के लोग हैं और एलोपैथिक के लोग भी हैं। साथ ही साथ यहां पर राशन कार्ड की केवाईसी वगैरह का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है और विद्युत विभाग की ओर से भी यहां पर हमारे जय साहब स्वयं बैठे हैं अपने दलबल।

0: मेला लगाया गया है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी आई हैं और आयुर्वेदिक विभाग के लोग भी इसमें हैं, होम्योपैथी के लोग हैं और एलोपैथिक के लोग भी हैं। साथ ही साथ यहां पर राशन कार्ड की केवाईसी वगैरह का कार्य भी यहां पर किया जा रहा है और विद्युत विभाग की ओर से भी यहां पर हमारे जेई साहब स्वयं बैठे हैं अपने दलबल सहित। काफी अच्छा प्रयास सरकार का है कि जनता के द्वार जाकर के इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। यहां पर हम भी अपने दवाइयों के बारे में यहां पर ले रहे हैं कि आयुर्वेदिक की जो दवाइयां हैं वो यहां पर निःशुल्क वितरण की जा रही है। बहुत अच्छा लगा और सरकार इसी प्रकार से आगे भी ये आयोजन जो है न्याय पंचायत स्तर में गांव-गांव में करे तो और अच्छा लगेगा, लोगों को लाभ होगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में आगामी 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में विधिक सेवा योजनाओं के प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई और बागेश्वर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
5: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति वंदन।

0: श्रोता विपिन रहे जाके स्वर में यह भक्ति वंदन अभी आपने सुना। इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 होने को ही अब आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी कीर्ति जखमोला। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 मां ग्रामीण क्षेत्रों मां 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को निर्माण कार्य ली। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का वास्ता प्रस्ताव थे मंजूरी दियाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाला सभ्य श्रद्धालुओं से शांति अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कही ची। और मेरठ से ऋषिकेश थे प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना खुनी सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू हुआ लू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों को निर्माण करा ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय का अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों का अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को निर्माण को 18,900 करोड़ से ज्यादा रुपया आवंटित कराया छी। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना की प्रगति को आकलन करने को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करे गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग का सचिव रोहित कंसलन का आई। बैठक में राज्यों का वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमान का अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया छी। ये में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित करे गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मानकों का अनुरूप उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव थे मंजूरी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना थे भी स्वीकृति प्रदान करी गई। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गो पर संचालित घोड़ा खच्चरों को बीमा प्रीमियम को 20% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करे जाने का प्रस्ताव थे भी मंजूरी दियाई। ये का अलावा उपनल कर्मिकों थे समान कार्यखुण समान वेतन संबंधी पात्रता की कट ऑफ तिथि में संशोधित थे स्वीकृति दिए गई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026, कारापल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 ने भी मंजूरी प्रदान की। उत्तराखंड जिला का कर्णप्रयाग क्षेत्र में हेमकुंड साहिब बटी लौटन कुछ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का बीच हुआ विवाद को

0: बाद राज्य सरकार ने घटना को संज्ञान लियो च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कही च। उन बोली कि हेमकुंड साहिब देश को प्रमुख आस्था केंद्रों में बटी एक च, जक हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन खुणी पहुंची दी। मुख्यमंत्री ने बोली कि यात्रा को उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा च। उन बोली कि सभी श्रद्धालुओं थे धार्मिक मर्यादाओं और स्थानीय परंपराओं को सम्मान करी यात्रा करन चैंद। श्री धामीन बोली कि कै भी प्रकार को विवाद, उकसावा या कानून व्यवस्था ते प्रभावित करण वाली गतिविधियों से बचन आवश्यक च। प्रदेश में राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्ड खुणी निर्धारित आय सीमा की समीक्षा करी जाली। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों ते यहाँ खुणी समिति गठित करी वर्तमान मानकों को पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिए। देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बोली कि राशन कार्ड खुणी निर्धारित आय मानक काफी पुराना वेगी, जैसे कई पात्र लोगों थे योजना को लाभ मिलने में परेशानी होनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन विक्रेताओं को नवंबर माह बटे लंबित लाभांश एक सप्ताह का भीतर जारी करे दिए जालू। उन अधिकारियों थे आगामी 30 जून थे राशन वितरण प्रणाली थे पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्देश भी दिए।
1: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ, तो वो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन अपात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सख्त समय में सूचना नहीं देंगे और विगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी, तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: मेरठ का मोदीपुरम बटी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला थे हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू करना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई च। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम का बीच मेरठ बटे ऋषिकेश थे RRTS नेटवर्क को विस्तार पर सहमति बन गई। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना खुणी जल्दी सर्वेक्षण करे जालू। पेश च एक रिपोर्ट।
3: प्रस्तावित योजना के अनुसार नई रेल ट्रैक मेरठ का मोदीपुरम स्टेशन से शुरू है की मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होंदी ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला क्षेत्र तक पहुंचलू। परियोजना को लगभग 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड मचे। नमो भारत ट्रेन का संचालन से दिल्ली और ऋषिकेश का बीच यात्रा को समय वर्तमान 5-6 घंटा से घटी की लगभग 2.5-3 घंटा रह जाने की संभावना छे। ये सी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होली। गौरतलब छे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करे की ये संबंध में प्रस्ताव सौंपी छो। आकाशवाणी देहरादून का समाचार कक्ष बटिन रविंद्र सिंह।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज देहरादून स्थित अपना शासकीय आवास पर अधिकारियों और कर्मचारियों दगड़ योगाभ्यास का ही। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व में भारतल योग की प्राचीन परंपरा थे वैश्विक पहचान दिलाई। उन बोली कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को माध्यम नीच बल्कि मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन को आधार बीच। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर पर आयोजित होने वाला योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ी के भाग लेने को आग्रह किया। उन बोली कि सभ्य लोग योग थे अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बना के स्वस्थ और निरोग जीवन की दिशा में कदम बढ़े। चंपावत जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ आम जनता थे पहुंचाना का उद्देश्य से जन कल्याण मेलों और शिविरों को आयोजन करे जाणु च। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताई कि यूं मेलों को उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की समस्याओं और अपेक्षाओं थे सुनना का दगड़ी विभिन्न कर्मचारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाण च। उन बोली कि चंपावत नगर पालिका सहित विभिन्न विकास खंडों में शिविरों को आयोजन शुरू हो गया। ये शिविर आगामी 20 जून थे जिला का सभी 4 विकास खंडों और 5 नगर निकाय

0: क्षेत्रों में आयोजित करे जालू। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील कही चे कि वो निर्धारित तिथियों का अनुसार अपना क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पहुंची की विभिन्न सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जन कल्याण मेला समस्त हमारे पूरे जनपद अंतर्गत चल रहा है। इसमें सम्मानित नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मांगे हैं, उन सभी का क्रियान्वयन घोषणा जो हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से किया जाना है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह है, आप वहाँ पे अपने जो आवेदन है उसको लेकर के आएँ और उसमें जो अधिक से अधिक लाभ जो है उसको प्राप्त करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को निर्माण कार्य ली। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड थे पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव थे मंजूरी दियाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से शांति, अनुशासन और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कही। और मेरठ से ऋषिकेश ने प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना खुणी सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू हुआ लो। ये का दगड़ी गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं के मैं राजेंद्र सिंह बिस्टिक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप लोगों को हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम शुरुआत करनू आज एक बात दगे। श्रोताओं हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ धानक फसल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल से हमारे पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में जेठा महण यानी मई जून में बोई जाने वाले धान के जेठी धान कही जाऊँ। यह फसल का अगर बखत पर बोई जो तो यह भल पैदावार देनी और किसानों की आय के बढ़ोनी वाली फसल है। श्रोताओ जेठी धान की उन्नत खेती के लिए भल जल धारण करने वाले दोमट माटी सब ने उपयुक्त मानी जा। खेतों दो या तीन बार जुताई कर भी समतलकरण और गोबर एक सड़ी खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करन ये लीजिए बहुत जरूरी है। श्रोताओ जेठी धान के उन्नत खेती के लिए बीज और नर्सरी की बात करूँ तो प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों चयन कर भी वीक बीजों चार जरूर करन चाहिए ताकि रोगन है यह सुरक्षा है सको। वीक बाद सही वक्त में यह एक नर्सरी बुआई कर दें जाए। श्रोताओं नर्सरी बुआई के बाद 20 व 25 दिन में स्वस्थ और भाल पौधों खेत में रुपाई करन चाहिए और कतार व कतार और पौधों व पौधों की उचित दूरी बढ़ाना बहुत जरूरी हो। एक बाद मटक परीक्षण आधार पर उर्वरकों या रासायनिक खादों संतुलित और न्यूनतम प्रयोग करन चाहिए और जैविक खादों प्रयोग को बढ़ावा दें चाहें। श्रोताओं एक जल प्रबंधन लीजिए खेत में आवश्यकता अनुसार पानी धरन चाहें और ज़्यादा जल भराव है खेत को बचाओ चाहें। फूल और दाना लगना बखत यह में पर्याप्त नमी होना

0: बहुत जरूरी छे। श्रोताओ, बखत बखत पर यह निराई गुड़ाई कर भी खरपतवार के निकाल दिन से और कीट और रोग दिखाई दिन पर कृषि वैज्ञानिकों सलाह के अनुसार नियंत्रण करन से। श्रोताओ, जेठी धाना प्रमुख उन्नत प्रजातियों की बात करनु तो SDR 77 गोविंद, पंथ धान 10, पंथ धान 12, PR 113, SARJU 52 और MTU 70 29 स्वर्णा एक उन्नत प्रजातियां हैं। श्रोताओं, जेठी धान की खेती में उन्नत प्रजातियों का चयन, संतुलित उर्वरक प्रयोग, जल प्रबंधन और बखत पर रोग कीट नियंत्रण के अपना भी किसान भाई बहनी ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकनी। अगर वैज्ञानिक खेती के तकनीकन का अपना भी यह खेत करी जो तो यह में लागत कम और फसल गुणवत्ता और उत्पादकता दुआने में वृद्धि है सकें। तो श्रोताओं, यथे आधे बात आप कार्यक्रम में सुनो इन्हें बात।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप आघिन के आप लोगों के सुनोनू खेत बचाव अभियान के अंतर्गत रासायनिक खादों संतुलित और न्यूनतम प्रयोग विषय पर कृषि विभाग लमगाड़ जिला अलमाड़ा जन्ना न्याय पंचायत प्रभारी सुश्री रानु काराकोटी दगड़ी राजेंद्र सिंह बिष्ट क्षेत्र संकलित बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, खेती की बढ़ती लागत और मिट्टी की घटती उर्वरता आज किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में खेतों की सेहत को बचाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत रासायनिक खादों के संतुलित और न्यूनतम प्रयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्षेत्र संकलित बातचीत में जुड़ रहे हैं कृषि विभाग लमगड़ा अल्मोड़ा के जन्ना न्याय पंचायत प्रभारी सुश्री रानू काराकोटी जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि खेत बचाओ अभियान क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
1: सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, खेत बचाओ अभियान उत्तराखंड सरकार कृषि विभाग द्वारा राज्य में मिट्टी की उर्वरता और कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण जन जागरूकता अभियान है, जो कि 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का लाभ, कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण करना।
0: जी जी मैम, बात करते हैं रासायनिक खादों का संतुलित और न्यूनतम प्रयोग की। तो रासायनिक खादों का संतुलित और न्यूनतम प्रयोग क्यों आवश्यक हो गया है और इससे किसानों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं?
1: देखिए, रासायनिक खादों के संतुलित और न्यूनतम उपयोग से सबसे पहले तो मिट्टी की उपजाऊता क्षमता को बचाया जाता है, ठीक है, अगर हम उसका कम से कम उसका उपयोग करेंगे रसायन का। इसके अलावा कृषि लागत को भी कम किया जाता है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि इससे रासायनिक खादों के जो हानिकारक अवशेष होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए रासायनिक खादों का न्यूनतम और संतुलित उपयोग किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये जल प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है।
0: जी मैडम, बात करते हैं आजकल के समय में रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग गया है, तो लगातार अधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और खेतों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है?
1: लगातार अधिक रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी में मौजूद जो केचुए होते हैं और मित्र जीवाणु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं।

0: जिससे मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे उत्पादन क्षमता भी खत्म होने लगती है या कम हो जाती है।
1: तो मैम बात करते हैं, कोई भी किसान कैसे जान सकते हैं कि उनके खेतों को वास्तव में कितनी खाद की आवश्यकता है, इसमें मृदा परीक्षण की क्या भूमिका है?
0: खेतों में वाकई में कितनी मात्रा में खाद डाला जाए, इसके लिए सबसे पहले मृदा का परीक्षण कराना जरूरी है। हर 2 साल में मृदा का परीक्षण किया जा सकता है। इसका परीक्षण किसी भी नजदीकी मृदा प्रयोगशाला से किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको अल्मोड़ा क्षेत्र में बताऊं, तो अल्मोड़ा क्षेत्र में नजदीकी मृदा प्रयोगशाला कोसी में उपस्थित है।
1: तो अगर कोई किसान अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है?
0: यदि किसी किसान को मिट्टी की जांच करानी है, या तो वो कृषि विभाग से सीधा संपर्क भी कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी मिट्टी को खुद भी अपने क्षेत्र से ले जा करके प्रयोगशाला में ले जा सकता है, और प्रयोगशाला में उसको उसकी मृदा का परीक्षण करके उसको सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा, जिसमें कि उसकी मृदा की सारी जानकारी होगी कि उसकी मृदा में सॉइल पीएच बोलते हैं वो कितना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, सॉल्युबल सॉल्ट वो कितने प्रेजेंट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी है, जो कि उसमें एनपीके का जांच करी जाती है, आयरन की जांच करी जाती है, जिंक की जांच करी जाती है। इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जांच करी जाती है, वो किसान को बता दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे बाद में वो अपनी मृदा में, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन के लिए जो भी उर्वरक चाहिए होता है वो उस उर्वरक को अपनी मृदा में डाल सकता है। यदि जिंक की कमी नहीं है तो वो जिंक ना डाले, इस तरीके से इसको किया जाता है।
1: तो मैम आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये मृदा जो परीक्षण होता है, ये प्रक्रिया हमारे किसानों के लिए निःशुल्क है या इसमें कोई शुल्क लिया जाता है?
0: ये सब्सिडाइज रेट पे है। इसमें जनरली जब कृषि विभाग इसको कराता है, हम लोग हमारे जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर हम लोग कुछ क्षेत्र चूज करते हैं, तो उसमें हम लोग उस वहाँ से जो सैंपल लिए जाते हैं वो जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। इसके अलावा यदि कोई अपना अलग से कराना चाह रहा है तो 150 रुपए के करीब इसका शुल्क आता है।
1: तो मैम बात करते हैं संतुलित उर्वरक प्रबंधन की, तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन क्या है और किसान इसे व्यवहारिक रूप में कैसे अपना सकते हैं?
0: संतुलित उर्वरक प्रबंधन का मतलब है कि मृदा में जरूरत के हिसाब से ही उर्वरक डाला जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मृदा में किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसका पता लगने के बाद उसी न्यूट्रिएंट का मृदा में उसको डाला जाए। इसके अलावा दूसरे रसायन या अनावश्यक उर्वरक उसमें ना मिलाए जाए।
1: तो मैम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, तो ये खादें रासायनिक खादों की मात्रा को कम करने में कितने सहायक हैं?
0: देखिए, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि ये सब पारंपरिक तरीके हैं। इनका सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एवं फसलों में भी जो हानिकारक अवशेष की जो आजकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, वो ये सारी समस्याएं इनमें नहीं होती हैं। इसलिए एक आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो रासायनिक खाद होती है वो तुरंत न्यूट्रिएंट सप्लाई तो कर देती है, लेकिन अगर उसका लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो वो मृदा को तो नुकसान पहुंचाएगी ही, इसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य को भी उससे बहुत हानि हो सकती है। इसके लिए अब अधिक से अधिक गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट पे हमें निर्भरता बनाई जानी चाहिए और कम से कम रसायनों का हमें उपयोग करना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये बताइए कि क्या जैव उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर सकता है, तो किसान इसको कैसे अपना सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकता है। जैसे जैव उर्वरक होते हैं, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ, पीएचबी है, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, पीएचबी नाम से ही आता है। एक केएमबी है, पोटेशियम वाला है ये। इसके लिए हम इससे क्या होता है, इससे मिट्टी में जीवाणु के माध्यम से खेतों में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को संतुलित किया जाता है, तो ये जनरली ये हानिकारक नहीं होते हैं। और इससे हम लोग अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम रसायनों का कम से कम उस पर निर्भरता कर सकते हैं।
1: जी जी, तो मैम आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग किसानों को कौन कौन सी तकनीकी सलाह और सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है?
0: खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विभाग किसानों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर रहा है, तो हम लोग इसमें धीरे धीरे रसायनों की मात्रा को कम करने के लिए लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जो कि कृषि से संबंधित है उनकी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा वीपी काल से वैज्ञानिकों की एक टीम गठित हुई है जो कि कुछ क्षेत्रों में खेतों का भ्रमण भी कर रही है।

0: जाकर के किसानों से मिल रही है और वहां पे जितनी भी उनको जानकारी दी जा सकती है वो जानकारी उनको प्रदान करी जा रही है और रसायनों के उपयोग को कम से कम करने के लिए इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी, तो मैम क्या आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसे किसान भी है जिन्होंने संतुलित खाद प्रयोग अपना कर कम लागत और अच्छी पैदावार हासिल की हो?
0: जी बिल्कुल है, इसमें एक ही किसान का नाम लेना तो गलत होगा क्योंकि पूरे क्षेत्र में इलमगढ़ा क्षेत्र में ही जो जनला न्याय पंचायत है इसके अंतर्गत आने वाले जो ग्राम सभा है, गौना है, बघाड़, बड्यूड़ा, ढैली, इन सभी ग्राम सभाओं में किसान अभी भी, मैं जितना बार मेरा भ्रमण रहा है मैंने देखा है और कई बार हम लोग वहाँ पे, मैं बीज बांटने भी गई हूँ, मैं वहाँ किसानों को अपने कृषि निवेश केंद्र के माध्यम से बीज भी देती हूँ, तो वहाँ पे अभी भी पारंपरिक तरीकों को ही अपनाया जा रहा है। कभी वहाँ से ऐसी डिमांड नहीं आती है कि उनको रसायन दिया जाए या रसायन खेती के लिए दिया जाए, वो लोग रसायन को प्रेफर नहीं करते हैं। जनरली वहाँ पे जो तरीके हैं जैसे कि गोबर की खाद वगैरह, इन सबको ही वो लोग यूज करते हैं। इसके अलावा एक शहर फाटक में हमारी सब्जियों की पूरी बेल्ट है, वहाँ पर भी उत्पादन पारंपरिक तरीकों से ही किया जाता है।
1: जी, कहने का मतलब है आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है।
0: लोग इसका भी अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर हो रहा है तो हमारा काम है कि रसायन की निर्भरता को कम किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए।
1: जी, तो मैम अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वे लोग रासायनिक खादों का संतुलित व न्यूनतम प्रयोग करें और मिट्टी का स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें?
0: देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है, तो मेरा जो संदेश है वो यही है कि अगर स्वस्थ धरा तो खेत हरा। रसायनों को अगर कम से कम उपयोग करेंगे और पारंपरिक तरीकों पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए, क्योंकि रसायनों का उपयोग कम करने से सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। इससे जो इनमें अवशेष की जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को लिए मिल रही है कि फसलों में रसायनों के अवशेष आ रहे हैं, और इसके अलावा पानी लगाते हैं खेतों में तो उसमें भी ये पानी में घुल करके हमारे जल के जो स्रोत हैं, जो कि बहुत साफ स्रोत माने जाते हैं, और वहां पर भी ये पानी में भी इसका मिश्रण हो रहा है, तो इसको कम से कम इसका यूज किया जाए या फिर जितना जरूरत है उतना ही यूज किया जाए और पारंपरिक तरीकों को जोर दिया जाए, जिससे कि खेती जो होगी आपकी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, मृदा जो होगी वो स्वस्थ रहेगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात मैम। आपने रासायनिक खादों के संतुलित और न्यूनतम प्रयोग के महत्व, मृदा परीक्षण, जैविक विकल्पों और खेत बचाओ अभियान की जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई। हमें विश्वास है कि इस जानकारी से हमारे किसान और हमारे श्रोता अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोतावाल आप लोगों सुनो खेत बचाओ अभियान अंतर्गत रासायनिक खादों संतुलित और न्यूनतम प्रयोग विषय पर कृषि विभाग लमगाड़ अलमाड़ा जन्ना न्याय पंचायत प्रभारी सुश्री रानू काराकोटी टिगड़ी राजेंद्र सिंह बिस्टे के क्षेत्र संकलित बातचीत। अब कार्यक्रम में अधीन आप लोगों के सुनोनू खरीफ फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर महेंद्र सिंह दगड़ी प्रमोद पांडे का भेंटवार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ से डॉक्टर महेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि खेत बचाओ अभियान क्या है?
3: खेत बचाओ अभियान एक देशव्यापी अभियान है जो 1 से 30 जून 2026 तक पूरे देश में चल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमें किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवश्यकता पड़ने पर ही रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक फफूंदी नाशकों का प्रयोग करें। हमें अपने खेतों को रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाना है एवं मिट्टी को स्वस्थ रखना है। कम खाद, सही सलाह, स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, सशक्त भारत। पर्यावरण बिन जगत में बनत नहीं कोई बात, इस पर टिकी है मानव जात। जल को भी सुरक्षित रखना है, मिट्टी को भी सुरक्षित रखना है। जल है तो कल है, जीवन का हर फल है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है और रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का एवं रासायनिक फफूंदी नाशकों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना है। केमिकल इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन।
2: जी डॉक्टर साहब, अब हम लौट के आते हैं अपने विषय की ओर। डॉक्टर साहब जैसा कि हमारा

0: है कि फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। तो ये कीट क्या होते हैं?
1: कीट आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं एवं वर्ग इंसेक्टा या हेक्सापोडा में आते हैं। इनमें तीन जोड़ी पांव, शरीर तीन भागों में बटा रहता है, शीर्ष वक्ष एवं उदर, एक जोड़ी एंटीना, एक जोड़ी कंपाउंड आंखें होती हैं। पृथ्वी पर जीवों की कुल प्रजातियों में 70% से अधिक कीट हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने पर परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका बाहरी कवच सख्त होता है जो क्यूटिकल का बना होता है। क्यूटिकल एक काइटिन, क्यूटिकल काइटिन से बनी होती है और काइटिन एक प्रोटीन है। इस कवच से कीट को सुरक्षा मिलती है। इनके शरीर में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं, इन्हीं से सांस लेते हैं। फसलों से संबंधित कीटों का जब हम अध्ययन करते हैं उसे कृषि कीट विज्ञान कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले अनेक जैविक कारकों में कीट सबसे प्रमुख है।
0: नासाब, कीट फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते
1: हैं? कीट फसलों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों का रस चूसकर, जैसे माहू, थ्रिप्स, जैसिट, और इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा कमजोर एवं वृद्धि रुक जाती है। पौधों के तनों में छेद करके ये पौधों के अंदर जो है छेद भी कर देते हैं, जैसे धान का तना छेदक। पत्तियों को खाकर ये प्रकाश संश्लेषण को कम कर देते हैं। मक्के में लगने वाला फॉल आर्मी वॉर्म कीट और टिड्डा जो पत्तियों को जो है ये खा देते हैं। फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये फलों के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टमाटर में फल छेदक।
0: जी, फसलों में कीट लगने के मुख्य कारण क्या है?
1: आमतौर पर बारिश के समय फसलों पर कीटों की अत्यधिक समस्या है। अत्यधिक नमी, खेतों में खरपतवारों की अधिकता, उर्वरकों एवं रसायनों का असंतुलित प्रयोग, एक ही फसल को बार बार बोना एवं अनुकूल मौसम में कीटों का प्रकोप बढ़ता है।
0: जी,
1: जड़ों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कुरमुला कीट जो है वो भी जड़ों को काटकर जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है।
0: तो कीट प्रबंधन में किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: कीट प्रबंधन में किसानों को लगातार अपने खेतों को निरीक्षण करते रहना चाहिए। पत्तियों के निचले भाग को भी वो उन्हें देखते रहना चाहिए। कीटों के अंडे, कीटों की सुंडी या वयस्क अवस्था को किसानों को पहचानना आना चाहिए।
0: जी, ऐसा फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन से कीट पाए जाते हैं?
1: धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, भूरा फुदका, गंदी बग, मक्का में फॉल आर्मी वॉर्म, गेहूं में माहू दीमक, चना एवं दालों में फली छेदक, सब्जियों में सफेद मक्खी, थ्रिप्स जैसी फल एवं तना छेदक, सरसों में माहू।
0: जी डॉक्टर, ऑर्गेनिक तरीके से हम फसलों में कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकेंगे?
1: ऑर्गेनिक तरीका जैविक तरीका, इसमें हम खेतों को तैयार करते समय 100 किलोग्राम नीम की खली को एक एकड़ खेत में हमें मिलाना चाहिए। खड़ी फसल में नीम की खली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसानों को कीटों का प्रकोप होने पर 1 लीटर पानी में 5 ml नीम का तेल मिलाकर भी किसान छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी,
1: और 1 लीटर पानी में 5 ग्राम जस्ट वैसिका पाउडर मिलाकर भी छिड़काव करें। खेतों में केवल सड़ा हुआ गोबर दें। कच्चे गोबर में कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा रहती है।
0: जी सब, अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती क्या है, इसमें कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती की बात आज हमारी सरकार भी बात कर रही है।
1: प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यह गाय पर आधारित खेती है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण तथा कम लागत में गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे 10 पर्णियर। यह 10 प्रकार की पत्तियों से बना प्राकृतिक कीटनाशक है। आवश्यकता इसमें किसानों को एक ड्रम चाहिए, 5 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक और 10 प्रकार की पत्तियां जिनकी हम चटनी बना देंगे। तो इसको बनाने के लिए इस पूरी सामग्री को एक ड्रम में मिला दिया जाता है एवं 100 लीटर पानी से ड्रम को भर दिया जाता है। ड्रम को ढक दिया, प्रत्येक दिन मिश्रण को लकड़ी के डंडे से घड़ी की दिशा में हिलाते हैं एवं 15 दिन में 10 पर्णी अर्क तैयार हो जाता है। 5 लीटर 10 पर्णी अर्क को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यह माहू, थ्रिप्स, जैसिट, सफेद मक्खी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें उत्पाद है वो है नीमास्त्र। यह भी एक प्राकृतिक कीटनाशक है। इसमें गोमूत्र 5 लीटर, गोबर 5 किलो, नीम की पत्तियां 5 किलो और पानी 200 लीटर चाहिए।
0: जी,
1: इसकी जो बनाने की विधि है, इसमें जो है नीमास्त्र बनाने की विधि, इसमें एक ड्रम में 200 लीटर पानी भर लेते हैं और पानी में 5 किलोग्राम गोबर और 5 लीटर गोमूत्र मिला देते हैं। अब इसमें कुटी हुई नीम की पत्तियां मिला दें, लकड़ी की सहायता से मिश्रण को अच्छी तरह मिला लेते हैं और ड्रम को ढककर छायादार स्थान पर 48 घंटे तक रख देते हैं। 48 घंटे के बाद मिश्रण को सूती के कपड़े से छान लें। तैयार नीमास्त्र को छानकर सीधे फसल पर छिड़का जा सकता है। प्रति एकड़ 100 लीटर घोल का छिड़काव किया जाता है। यह माहू, सफेद मक्खी, जैसे थ्रिप्स, अन्य रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है इसी में अग्नियस्त्र। यह भी एक प्राकृतिक कीटनाशक है। गोमूत्र इसमें 20 लीटर, नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम, तंबाकू 1 किलोग्राम, हरी मिर्च 500 ग्राम, लहसुन 500 ग्राम। तंबाकू, हरी मिर्च और लहसुन को अलग अलग बारीक पीस लें। नीम की पत्तियों को भी पीस लें। एक स्टील के बर्तन में 20 लीटर गोमूत्र लें, इसमें नीम, तंबाकू, मिर्च और लहसुन मिला दें। मिश्रण को धीमी आंच पर उबालें, 4-5 बार उबाल आने तक पकाएं। मिश्रण को ठंडा होने दें, ठंडा होने पर इसे 48 घंटे तक छायादार स्थान पर रखें। 48 घंटे बाद कपड़े से छान लें। 100 लीटर पानी में 3 लीटर अग्निअस्त्र मिलाकर छिड़काव करें। फल छेदक सुंडी, तना छेदक, चबाने वाले अन्य कीटों के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। जो चबाने वाले अन्य कीट है इनके लिए यह प्रयोग में लाया जाता है।
0: अब बात आती है आर्थिक क्षति स्तर ETL, ये क्या होता है?
1: इस धरती पर सभी को रहना है। यह धरती सभी की है, इंसानों की, कीड़ों की, जीव जंतुओं की, पौधों की, सभी को इस धरती पर रहना है। जब किसी कीट की संख्या इतनी बढ़ जाए कि उससे किसान को आर्थिक नुकसान होने लगे, एक ऐसा स्तर जहां पर कीटों को नियंत्रण करने के उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई भी जीव जो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है वो नासी जीव पेस्ट है।
0: अब बात करते हैं समेकित कीट प्रबंधन की, ये क्या होता है, इसके क्या सिद्धांत है?
1: समेकित कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM फसलों में कीटों के प्रबंधन की एक वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल पद्धति है। इसमें कीटों के प्रबंधन के लिए सांस्कृतिक, कल्चरल, यांत्रिक, मैकेनिकल, भौतिक, फिजिकल, जैविक एवं आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग भी किया जाता है। IPM का उद्देश्य कीटों को पूरी तरह समाप्त नहीं करना है, बल्कि उनकी संख्या को आर्थिक क्षति स्तर ETL के लेवल से नीचे बनाए रखना है। सिद्धांत है इसका नियमित रूप से फसलों की निगरानी करना, कीटों की संख्या को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना, कीटों की सही पहचान करना, उनके जीवन चक्र, नुकसान करने की अवस्था, नुकसान करने की प्रवृत्ति, अंडे देने की जगह गैर रासायनिक उपायों को प्राथमिकता देना, आवश्यकता पड़ने पर ही अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके जो सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, केमिकल इज ऑलवेज द लास्ट ऑप्शन। इसकी जो विधियां हैं वो मैं बताना चाहूंगा किसानों को। कल्चरल विधि, सांस्कृतिक विधि, इसमें समय पर बुआई करनी चाहिए, कीट प्रतिरोधक प्रजातियों का उपयोग करना चाहिए, संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए। इसकी अगली में विधि है यांत्रिक विधि, इसमें जो कीटग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए, कीटों के अंडों सुंडियों को नष्ट कर देना चाहिए। की इसकी अगली विधि है, इसमें पीले और नीले चिपचिपे प्रपंचों का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच जो कुर्मुला के वयस्क के लिए बहुत ही लाभदायक है, पीला चिपचिपा प्रपंच माहू के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, नीला चिपचिपा प्रपंच थ्रिप्स और जैसिड के लिए बहुत प्रभावशाली है। फेरोमोन प्रपंच भी एक जो है महत्वपूर्ण इसमें आता है। इसमें मादा कीट की गंध जैसी कृत्रिम गंध होती है, यह नर कीट को आकर्षित करता है, नर कीट इस प्रपंच में फंस जाते हैं, नर कीटों की संख्या कम हो जाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी की जनसंख्या में भारी कमी आती है। यह कीटों की निगरानी भी करता है और बायोलॉजिकल, जैसे एक कीट दूसरे कीट को खाता है, जैसे लेडी बर्ड बीटल माहू को खाता है, तो बायोलॉजिकल तरीके से भी जो है कीटों का जो है नियंत्रण प्रबंधन होता है। और केमिकल, जैसे मैंने बताया कि सबसे आखिर में आवश्यकता पड़ने पर ही केवल अनुशंसित कीटनाशकों का प्रयोग करें, जैसे माहू के लिए इमिडाक्लोपीड 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें, धान में तना छेदक के लिए फिप्रोनिल 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, धान में फूरा फुदका के लिए इमिडाक्लोपीड 0.3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और मक्का में फॉल और मीवम के लिए कोराजन 0.4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं रोगों की। तो डॉक्टर साहब, इस फसल में हमारे कौन-कौन से रोग लगते हैं?
1: पादप रोग पौधों में होने वाली वह अवस्था है जिसके कारण उनकी सामान्य वृद्धि और कार्य प्रणाली बाधित होती है। यह मुख्य रूप से कवक, जीवाणु, विषाणु से होती है, और इनके जो मुख्य कारण है फसलों में रोग लगने के मुख्य कारण है संवेदनशील पौधा, रोगजनक फूद, जीवाणु विषाणु और अनुकूल वातावरण, अत्यधिक नमी, तापमान में उतार चढ़ाव, जल भराव, संक्रमित बीज, खेतों में खरपतवार एवं अवशेषों की उपस्थिति भी रोगों को बढ़ावा देती है। धान में झुलसा, शीत ब्लाइट, गेहूं में पीला रतुआ रोग, आलू में पचेती झुलसा, अगेती झुलसा और टमाटर में ब्लाइट।
0: जी, ऐसा फसलों में रोग प्रबंधन हम कैसे करें?
1: रोग प्रबंधन के लिए किसान को प्रमाणित एवं रोग मुक्त बीजों का ही वो प्रयोग करें, समय पर बुआई करें, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, फसल चक्र को अपनाएं, उचित दूरी पर बुआई एवं जैविक तरीके से खेती को उन्हें अपनाना चाहिए, रसायनों का प्रयोग आखिर में एवं आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें करना चाहिए, और मिट्टी को स्वस्थ रखना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, देश को समृद्ध बनाना है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा बताई गई ये जानकारी से हमारे श्रोता अवश्य लाभ उठाएंगे। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अल्लाह आप लोगों ने सुनाओ खरीफ फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर महेंद्र सिंह दगेड़, प्रमोद पांडे की भेंटवार्ता। तो श्रोताओं, अब यह भेंटवार्ता का दगड़ आप कन्नू आज एक सलाह है बात और बात करना।

मृदा रहित खेती के लाभ हों। श्रोताओं, माटा के जाग में पोषक तत्वों युक्त घोल या कृत्रिम माटा माध्यमल उपयोग कर बेर खेत करण के मृदा रहित खेत कही जा। अगर यह खेती के लाभों बात करना तो मृदा रहित खेती के लाभन में 80/90% तक पानी की बचत हुए, जल प्रबंधन और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलो, कम जाग में ज़्यादा उत्पादन हो, फसल में खरपतवार और मिट्टी जनित रोग नहीं हो। यह के अंतर्गत फसलें गुणवत्ता ले बेहतर हैं और किसान यह खेत के पूरे साल भर तक कर सकें। तो श्रोताओं, कौनो मतलब से कि हमारे किसान भाई बहन यहाँ के पारंपरिक आधुनिक वैज्ञानिक खेती दगाड़ दगाड़े मृदा रहित खेत के लिए अपनौन से और अपन आय में वृद्धि करन से। तो श्रोताओं, यही सलाह दगाड़ आज किसान वाणी कार्यक्रम के लिए समाप्त करना बखत होगो। यह कार्यक्रम प्रायोजक ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हो। आप लोग फिर भेंट भेल। आयल राजेंद्र सिंह का आज्ञा दियो। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से।

नमस्कार आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में गौवाल जागों में 18,900 करोड़ डबलों की लागत 26,000 किलोमीटर है जात सड़कों का निर्माण करेल। राज्य मंत्रिमंडल उत्तराखंड को पूरी तरह बटी साक्षर राज्य घोषित करना प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हेमकुंड साहिब यात्रा में उनवाल सभी श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्यालजोल बढ़ाई रखने की प्रार्थना कर रखी। और मेरठ बटी ऋषिकेश ताले प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना के लिए सर्वेक्षण काम झट शुरू होल। और अब समाचार विस्तारल। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर है ज्याद ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेल। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के भीतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ है ज्याद डबल आवंटित करी गई छन। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं प्रगति अंदाज लगुणा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसलल की। बैठक में राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग ले। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमानक भीतर अटकियों परियोजनाओं में झट काम करना निर्देश दी गई छन। यमें विशेष रूपल कमजोर आदिवासी समूह बस्तियों पर ध्यान दी गई छू। राज्य मंत्रिमंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानकों के हिसाबल उत्तराखंड को पूरी तरह साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिहाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भई बैठक में गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ोड़ा को उद्देश्य भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को ले मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल चारधाम यात्रा बाट में चलण वाल घुआड़ खच्चरों बीमा प्रीमियमक 20% हिस्सा राज्य सरकारक बटी वहन करी जानक प्रस्ताव को ले मंजूरी दी। ये कलावा उपनल कार्मिकों को समान कामक लिजी समान वेतन थे जुड़ी पात्रता की कट ऑफ तारीख में सुधार को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 और उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 को ले मंजूरी प्रदान करी। चमोली जिला कर्णप्रयाग क्षेत्र में हेमकुंड साहिब बटी लौटनी कुछ श्रद्धालुओं और वाकरूणी लोगों के बीच भई झगड़ा के बाद राज्य सरकार घटना को ध्यान

0: मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील हेमकुंड साहिब यात्रा में उड़वाल सभी श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्याल जोड़ बनाए रखने की प्रार्थना कर रखी। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब देशक मुख्य आस्था केंद्रों में बटी एक छु जहाँ हर साल ठुल संख्या में श्रद्धालु दर्शनक लीजी पूजनी। मुख्यमंत्री कहा कि यात्रा का उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा छु। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक मर्यादाओं और स्थानीय परंपराओं का सम्मान कर बेर यात्रा करण चें। श्री धामिल कहा कि क्वेल प्रकारक झगड़ा उकसूण और कानून व्यवस्था को प्रभावित करण वाल गतिविधियों थे बचण जरूरी छु। प्रदेश में राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय राशन कार्डक लीजी तय आय सीमा की समीक्षा कर हाली। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्याल अधिकारियों को यह एक लीजी समिति गठित कर वर्तमान मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना निर्देश दी रखी। देहरादून में भई विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री को कि राशन कार्डक लीजी तय आय मानक बहुत पुराण हैगी जल कई पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने में कठिनाई हुए। खाद्य मंत्री बता कि राशन विक्रेताओं को नवंबर में बटी अटक्यू लाभांश एक हफ्ता भीतर जारी कर दी जाल। उन्होंने अधिकारियों को उड़ वाली 30 जून ताले राशन बांटने की प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने का आदेश ले दी रखी।
1: राशन कार्ड के मानकों में अभी हमारे को क्या संशोधन विगत कई 6-7 वर्षों से नहीं हुआ तो वो संशोधन करना चाहिए। आय के मानकों में भी संशोधन करना चाहिए। इसके साथ ही जो हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि यूनिट्स हमारी जब सरेंडर हो जाती है, यूनिट्स हमारी किसी की डेथ हो जाती है तो उन परिस्थितियों में सूचना नहीं मिलती है तो संबंधित यूनिट का राशन जाता रहता है। इसका भी हम उल्लेख कर दें कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि किसी का कोई ऐसा राशन अपात्र हो जाए किसी भी श्रेणी में, यदि उसका सत समय में सूचना नहीं देंगे और विगत कुछ समय उनको सूचना देने का वक्त देते हुए उसके बाद में सूचना प्राप्त नहीं होगी तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी की भी और संबंधित खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: मेरठक मोदीपुरम बटी ऋषिकेशक लक्ष्मण झूला ताले हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन सेवा शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है रे। उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के बीच मेरठ बटी ऋषिकेश ताले RRTS नेटवर्क का विस्तार में सहमति बन गई। यह की पूरी परियोजना रिपोर्ट तैयार करना लीजिए झट सर्वेक्षण कराई जाल। प्रस्तुत छू एक रिपोर्ट।
3: प्रस्तावित योजना के अनुसार नयू रेल ट्रैक मेरठक मोदीपुरम स्टेशन बठे शुरू है बेर मुजफ्फरनगर रुड़की और हरिद्वार है बेर ऋषिकेशक लक्ष्मण झूला क्षेत्र तक पुजल। परियोजना लगभग 72 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में और 78 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड में होल। नमो भारत ट्रेनक संचालन दिल्ली और ऋषिकेशक बीचक यात्रा बखत वर्तमान में 5-6 घंटे बटे घट बेर लगभग 2.5-3 घंटे रुणक संभावना छू। यह तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और वाग जानिन के तेज सुरक्षित और आधुनिक परिवहनक सुविधा उपलब्ध होली। ध्यान देने वाली बात छू कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दगड़ मुलाकात कर बेर यो संबंध में प्रस्ताव सौंपी छी। आकाशवाणी देहरादून अकलीजी समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है पहली आज देहरादून स्थित अपन शासकीय आवास में अधिकारियों और कर्मचारियों दगड़ योगाभ्यास करो। यो मौक पर मुख्यमंत्री कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशल नेतृत्व में भारतल योग की पुरानी परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई छू। उन्होंने कहो कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम है बल्कि मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन का आधार ले छू। मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों थे उड़ वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौक पर आयोजित हुणवाल योग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ भीड़ भाग लेने की विनती करी। उन्होंने कहा कि सब लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या हिस्से बने बेर स्वस्थ और निरोग जीवन एक दिशा में कदम बनूं चें। चंपावत जिला में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ आम लोगों ताले पुजुणा का उद्देश्य जनकल्याण म्यालों और शिविरों का आयोजन करी जानो। जिलाधिकारी मनीष कुमारल बता कि यो म्यालों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनना दगड़े अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनर लाभ पात्र लोगों ताले पुजोड़ छू। उनुल कौकी चंपावत नगर पालिका दगड़े अलग अलग

0: विकास खंडों में शिविरों का आयोजन शुरू है गो और यो शिविर उण वाली 20 जून ताले जिला सभी 4 विकास खंडों और 5 नगर निकाय क्षेत्रों में आयोजित करी जाल। जिलाधिकारी नागरिकों से प्रार्थना कर रखी कि तय तारीखों के अनुसार अपन क्षेत्र में आयोजित शिविरों में पुजबेर अलग अलग सरकारी योजनाओं जद है जात लाभ उठा।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जन कल्याण मेला समस्त हमारे पूरे जनपद अंतर्गत चल रहा है। इसमें सम्मानित नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मांगे हैं, उन सभी का क्रियान्वयन घोषणा जो हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से किया जाना है। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से आग्रह है, आप वहाँ पे अपने जो आवेदन है उसको लेकर के आएँ और उसमें जो अधिक से अधिक लाभ जो है उसको प्राप्त करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में गौक जागो में 18,900 करोड़ डब्लों की लागत 26,000 किलोमीटर है।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में गौक जागो में 18,900 करोड़ डबलों की लागत 26,000 किलोमीटर है जात सड़कों का निर्माण करेल। राज्य मंत्रिमंडल उत्तराखंड को पूरी तरह वटी साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल हेमकुंड साहिब यात्रा में उणवाल सभे श्रद्धालुओं थे शांति अनुशासन और दगड़े म्यालजोल बनाई रखने की प्रार्थना कर रखी। और मेरठ बटी ऋषिकेश ताले प्रस्तावित हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन परियोजना के लिए सर्वेक्षण काम झट शुरू होल। ये कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नज़र कर रहे हैं अर्थ फिल्म से। गीत का आवाज़ भी है जगजीत सिंह ने, कैफी आज़मी के बोल हैं और धुन तैयार की है जगजीत सिंह ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के अगले सोपान में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल को। इरशाद कामिल का लिखा गीत है, फिल्म का नाम है आई और संगीत निर्देशन है AR रहमान का।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोता भाई, आप सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म हिना में। गीत संगीत है रविंद्र जैन का।

हिना फिल्म के इस गीत के बाद श्रोता भाई आप सुनते हैं गौरव और पेपोन की आवाज़ में साउंड ट्रैक फिल्म का गीत। संगीत निर्देशन है मीडियवेल पंडित।

श्रुतो साउंड ट्रैक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना पेपोन की आवाज़ में। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं नुशरत बद्र का लिखा गीत, स्वर है अभिजीत का।

कतिल सिफई का कलाम अभी आपने सुना, स्वर था सलमा आगा का। श्रोताओं, इसी के साथ आज का मिले जुले गीत गज़लों का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट और हर मैदान की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक आज के मुख्य समाचारों के साथ। भारत ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजब बढ़त बनाई। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराया। मीनाक्षी हुड्डा, स्नेह प्राची और निखिल विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में आज चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया।

0: तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महासंग्राम से, जो कि इंग्लैंड और लीड्स में चल रहा है। भारत ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप में अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 95 रन की विशाल जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर की विमेन इन ब्लू ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है।
1: Sprinting forward, what a spectacular catch from Jemmy Rodrigues to wrap up the affairs this afternoon. 50 over champions march ahead in their T20 campaign with another clinical showing.
2: Harmanpreet Kaur की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की। पहले मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए लीड्स के हेडिंगले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया। यह महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से भारत की सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ियों ने 115 रन की साझेदारी की। शेफाली 38 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुई, जबकि स्मृति ने पहले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए 47 गेंदों में 74 रन बनाए। मैच के बाद उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि वह शेफाली के साथ बल्लेबाजी को काफी इंजॉय कर रही हैं।
3: We enjoy batting with each other quite a lot. With Shifu, you know, you have to be on toes with her. You have to keep telling her that don't complicate anything, just watch the ball. With the talents of what Richa and Shefali, they feel like trying to hit every ball for a six, which is very fair.
2: इसके बाद अंत में दीप्ति शर्मा ने दो गेंदों में 10 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। टीम के साथ खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। पूरी टीम 17.5 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। कप्तान बैबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 और हीतर सीगर्स ने 21 रन जोड़े। भारत के लिए श्रीचरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट अपने नाम किए। मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, सुनते हैं।
3: आई थिंक वी वर रियली गुड विद द बैट। इट वाजंट दैट इजी विकेट, बट आई थिंक द वे स्मृति एंड शेफाली बैटेड, दे यू नो गिव अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम द वे दे बोथ बैटेड टुडे।
2: अब भारतीय टीम का अगला ग्रुप मुकाबला 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से खेला जाना है, जहां भारतीय टीम की नजर जीत दर्ज करते हुए अपनी सेमीफाइनल की राह आसान करने पर होगी। स्पोर्ट्स कैन, प्राची वाजपेयी।
0: और अब विमेंस टीम के बाद

0: बात की जाए शुभमन गिल एंड ब्रिगेड की, भारत ने कल अफगानिस्तान को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में 170 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाकर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
1: By the bowlers, Shubman Gill, his 900 in ODI cricket, been phenomenal with the bat. Ishan Kishan, his second 100 in ODI cricket.
2: धर्मशाला में पहला एक दिवसीय जीतने के बाद शुभमन गिल की मैन इन ब्लू ने लखनऊ में भी अफगानिस्तान पर एक शानदार जीत दर्ज की। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल का दिन कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के नाम रहा। भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने कल अपने बल्ले से न सिर्फ मैच में बल्कि सीरीज में भी भारत की जीत पक्की कर दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्द ही गिर जाने के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूत स्थिति में लाने में मदद की। हिटमैन रोहित शर्मा कल अपने रंग में नजर आए और उन्होंने 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मेहमान टीम के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इन दोनों खिलाड़ियों ने शतक पूरा करते हुए 224 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को 320 के स्कोर तक पहुंचा दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने अपने एक दिवसीय करियर का 9वां शतक पूरा किया। कप्तान गिल ने 110 गेंदों पर 2 छक्के और 22 चौकों की मदद से 154 रन बनाए। दूसरे छोर पर ईशान किशन ने 79 गेंदों पर 7 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 125 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि इसके बाद आए भारतीय खिलाड़ी कुछ बहुत खास नहीं कर सके और टीम ने इस मजबूत शुरुआत की बदौलत 402 रन बनाए। ये 8वां मौका था जब भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट में 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत अब दक्षिण अफ्रीका के बराबर पहुंच गया है जिसने सर्वाधिक 8 बार 400 रन का आंकड़ा पार किया है। इस विशाल लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई और 45वें ओवर में 232 रन पर ही सिमट गई। मेहमान टीम के लिए रहमत शाह ने सर्वाधिक 79 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। अपना पहला मैच खेल रहे प्रिंस यादव के हाथों 2 सफलता लगी। अपना डेब्यू करने पर प्रिंस ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है।
3: जब भी कोई क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है तो वो ड्रीम यही करता है कि इंडिया के लिए खेलूंगा, इंडिया की जर्सी पहनूंगा। डेब्यू किसी भी प्लेयर के लिए अच्छी बात है, बट ये है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूं, अपनी टीम को जिताऊं।
2: शानदार शतकीय पारी के लिए शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात हॉकी के मैदान की, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने देश का झंडा बुलंद किया है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी महिला नेशंस कप में अपने आखिरी पूल मैच में उरुग्वे पर 3-2 की जीत दर्ज की।
4: सबसे पहले बात FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 की, जहां भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत के मनदीप सिंह मैच के साथ में शिलानंद लाकड़ा ने 13वें और नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोल दागा। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने शुरुआत से ही जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला जब मनदीप ने गोल के सामने एक तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद लाकड़ा ने 13वें मिनट में एक शानदार स्ट्राइक से स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में 35वें मिनट में नीलकांत शर्मा ने गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। जर्मनी के राफेल हार्टकोफ ने 45वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। आखिरी क्वार्टर में जर्मनी ने गोल करने के कई मौके बनाए लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया और मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच के साथ ही मनप्रीत सिंह भारत की से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ा। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप में 5वें स्थान पर है। दूसरी तरफ भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए आखिरी पूल मैच में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। शुरुआत में एक गोल खाने के बाद भारत ने जोश और संयम दिखाते हुए वापसी की। दीपिका ने 24वें और 56वें मिनट में 2 गोल किए जबकि दीपिका सोरेंग ने गोल किया। इस जीत के साथ भारत ने लगातार 3 जीत हासिल करके पूल ए में शीर्ष स्थान पक्का कर लिया। ये मैच मिडफील्डर नेहा के लिए भी खास मौका था जिन्होंने अपना 200वां सीनियर इंटरनेशनल

0: इंटरनेशनल मैच खेला। भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ सेमीफाइनल में उतरेगा और FIH नेशंस कप का खिताब जीतने तथा FIH प्रो लीग में वापसी करने की अपनी कोशिश जारी रखेगा। 20 जून को होने वाले सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चिली या कोरिया से होने की संभावना है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात फीफा की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में कोलंबिया ने आज उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया, जबकि घाना ने पनामा को 1-0 से और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत दर्ज की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण कोरिया से होगा।
2: कोलंबिया ने फीफा विश्व कप में अपनी वापसी का जश्न मैक्सिको सिटी स्टेडियम में डेब्यू कर रहे उज्बेकिस्तान पर 3-1 की रोमांचक जीत के साथ मनाया। मैच की शुरुआत में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 32वें मिनट में लुइस डियाज के शानदार मूव को डेनियल मोनोज ने बेहतरीन गोल में बदलकर कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत तक कोलंबिया का दबदबा बना रहा, वहीं दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अब्बोस बेग, फैजुल्ला एव

0: दिखाया। 32वें मिनट में लुइस डियाज के शानदार मूव को डेनियल मोनोज ने बेहतरीन गोल में बदलकर कोलंबिया को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत तक कोलंबिया का दबदबा बना रहा, वहीं दूसरे हाफ में उज़्बेकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अबोज बेग फैजुल्ला एव ने हेडर लगाकर शानदार गोल दागा। इस गोल के साथ ही स्कोर 1-1 से बराबर हो गया। कोलंबिया ने तुरंत पलटवार किया। स्टार खिलाड़ी लुइस डियाज ने नीचे की तरफ बेहतरीन शॉट लगाते हुए कोलंबिया को 2-1 से शानदार बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम मिनटों में कैंपाज ने शानदार हेडर के जरिए तीसरा गोल कर कोलंबिया की जीत की कर दी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप एल में घाना ने कालेब येरंगी के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की बदौलत पनामा को 1-0 से पराजित किया। दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए लेकिन वे नाकाम साबित हुए। मैच के अंतिम क्षणों में कालेब येरंगी ने अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल करते हुए घाना को 1-0 से जीत दिलाई। वहीं तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप 2026 का जीत के साथ आगाज किया। डलास स्टेडियम में हुए ग्रुप एल के मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त दी। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया तो 12वें मिनट में ब्रिटेन को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में तब्दील कर टीम की 1-0 की बढ़त पक्की की। इसके बाद क्रोएशिया ने मार्टिन बटुरिना के शानदार गोल की बदौलत वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और कॉर्नर किक पर हैरी केन ने बेहतरीन हेडर लगाकर अपना दूसरा गोल किया और इंग्लैंड को 2-1 से आगे कर दिया। पहला हाफ खत्म होने से पहले मूसा ने गेंद को गोल पोस्ट में डालकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में ब्रिटेन अलग ही अंदाज में मैदान पर उतरा और खेल शुरू होने के केवल 2 मिनट के अंदर जूड बेलिंगहैम ने शानदार व्यक्तिगत प्रयास करते हुए गोल दागा। इसके बाद मैच के अंतिम पलों में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करते हुए स्कोर 4-2 किया और ब्रिटेन की जीत पर मोहर लगा दी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब रुख करते हैं चीन का, जहां पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। मीनाक्षी हुड्डा ने आज इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने 51 किलोग्राम वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की नतालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। अब क्वार्टर फाइनल में कल 4 भारतीय खिलाड़ी अपना मुकाबला खेलेंगे, जिसमें 51 किलो में मीनाक्षी, 65 किलोग्राम वर्ग में स्नेह, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची रिंग में उतरेंगी। वहीं पुरुषों में निखिल 55 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखते नजर आएंगे। वहीं मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चाहिला महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब बात स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद कल से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में मैदान पर नजर आएंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक सत्र में पहला मुकाबला है।
2: ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट कंपटीशन फॉर द सीजन, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई फील रियली गुड, आई फील फिट एंड लेट्स सी टुमारो, आई एम वेटिंग फॉर टुमारो।
3: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा कल रात डायमंड लीग के दोहा में मैदान पर उतरेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था और पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा बीते कुछ समय से स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का यह स्टार भाला फेंक खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रोमेश पथिरागे इस लीग के लिए तैयार हैं। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशॉर्न वॉलकॉट, ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में कल सभी को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो सबको उम्मीद होगी कि कल दोहा में एक शानदार मुकाबला भारतीयों का इंतजार कर रहा हो। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह की आज पुण्यतिथि है। देश विदेश के लोग इस महान धावक को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मिल्खा सिंह का 91 वर्ष की उम्र में 18 जून 2021 को निधन हो गया था। फ्लाइंग सिंह को भारत में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने भारत का 3 ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया था और खासकर याद किया जाता है 1960 में 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी गई उस दौड़ को, जहां 1 सेकंड से भी कम अंतर में ये खिलाड़ी भारत के लिए पदक लाने से चूक गया था। लेकिन भारत के लिए कई

0: कीर्तिमान अर्जित किए इस खिलाड़ी ने। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें sportscan@air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंटकोबा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी

0: संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू

0: उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया।

0: and Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम से। गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। हसरत जयपुरी का कलाम है और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

0: याला याला दिल में कही, याला याला दिल में कही।
1: अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं उसे संगीत निर्देशित किया है राजेश रोशन ने। अनजान का लिखा गीत है, किशोर कुमार की आवाज़ है और फिल्म का नाम है याराना।

0: Charlie.
1: Yes, Papa.
0: Eating sugar.

0: तोहफा फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक हम लोग मुजरिम हैं।
1: ये आकाशवाणी है, हम लोग मुजरिम हैं। आज प्रस्तुत है श्री वी एस एन कैम्फर का लिखा ये उर्दू नाटक हम लोग मुजरिम हैं।

0: मीना, सुना नहीं तूने?
1: सुन तो रही हूँ, कहो क्या बात है?
0: जरा मुझे एक गिलास पानी ला दे।
1: मैं नहीं ला सकती।
0: क्यों, क्या तकलीफ है तुझे?
1: तू देख तो रही है कि मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। आशा को आवाज दे कि तुझे पानी ला दे।
0: बड़ी आई स्कूल का काम करने वाली, घर का काम करती नहीं, स्कूल का काम करेगी, काम चोर कहीं की। चल जा, जाकर एक गिलास पानी ला के दे मुझे।
1: मैं नहीं जाऊंगी, खुद जाकर पी ले।
0: ये बात है तो ले, पकड़ अपना फटा हुआ कुर्ता, खुद ही सी लेना। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ यहाँ।
1: रहने दे इसे, मैं खुद ही सी लूंगी। हाँ, और मुझे अब पढ़ने दे।
0: तो तू नहीं जाएगी?
1: कह तो दिया मैं नहीं जाऊंगी।
0: अच्छा, आने दे माँ को, तेरी मरम्मत ना करवाई तो मुझे कहना।
1: मैं पूछती हूँ तेरा जोर मुझ पर ही क्यों चलता है? इस घर में और भी तो हैं, आशा है, उषा है, मंजू है। विनोद तो खैर बीमार है, लेकिन ये बाकी जनता किस मर्ज की दवा है? इनमें से किसी को कहो कि तुम्हें पानी ला दें।
0: आशा है कहाँ?
1: किचन में होगी।
0: बड़ी बदतमीज है तू। आशा, अरे ओ आशा।
2: क्या है दीदी?
0: क्या कर रही है तू?
2: क्यों?
0: पहले मेरी बात का जवाब दे।
2: मैं खाने के बर्तन साफ कर रही हूँ।
0: और उषा कहाँ है?
2: उषा विनोद के पास बैठी है। विनोद के सिर में दर्द है, उसका सर दबा रही है।
0: और मंजू?
2: मंजू साथ वालों के घर गई है रेडियो सुनने।
0: रेडियो सुनने?
2: हाँ, आज बच्चों का प्रोग्राम है ना, वही सुनने गई है।
0: मतलब ये कि इस घर में सभी मसरूफ हैं, एक मैं ही बेकार हूँ। चलो कोई बात नहीं।
2: मुझे किस लिए बुलाया था दीदी?
0: एक गिलास पानी मिलेगा आशा?
2: जरूर मिलेगा दीदी, दो चार बर्तन रह गए हैं, उनसे निपट कर पानी ला दूंगी आपको।
0: अच्छा रहने दे, तू जा, मैं खुद ही पी लूंगी।
1: मैंने तो पहले ही कहा था कि खुद जाकर पी ले, इस घर में कोई किसी का काम नहीं करता।
0: हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। कौन?
3: मीना, दरवाजा खोलो।
0: आई माँ। माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम संभालो अपने घर को, मैं जा रही हूँ।
4: तू जा रही है? कहाँ जा रही है?
0: अपना सर फोड़ने जा रही हूँ।
4: अब फिर क्या हो गया? मैं जरा घर से निकलती हूँ और तुम लोग आपस में लड़ने मरने लगते हो। मीना, क्या बात हुई? तूने कुछ कहा है वीना को?
1: नहीं तो।
0: ये झूठ बोल रही है माँ, इन सब ने मिलकर मेरा नाक में दम कर दिया है। पूरे घंटे से पानी का एक गिलास मांग रही हूँ, लेकिन इस घर में कोई सुनता ही नहीं। इतने सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं तुमने माँ, और इनमें से एक भी काम कर।
4: वीना, क्या बक रही है तू? ऐसी भी क्या मुसीबत थी, तू खुद ही उठकर पानी पी लेती।
1: माँ, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि आप ही जाकर पानी पी ले।
4: अच्छा अच्छा, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। आशा कहाँ है? उषा, विनोद की तबीयत कैसी है?
5: विनोद की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, बुखार तेज़ हो गया था दोपहर को, सर में भी दर्द था, अभी अभी सोया है माँ।
4: अच्छा, ये ले, ये दवा विनोद के लिए है, जब सोकर उठेगा तो उसे खुराक दूध के साथ पिला देना।
5: सुन, दूध तो है ना घर में,
4: थोड़ा बहुत तो होगा।
5: मैं आशा से पूछती हूँ। आशा, आशा,
6: क्या है जी?
5: माँ पूछ रही है दूध है घर में? विनोद को दवा देनी है दूध के साथ।
6: सिर्फ चाय के लिए दूध है, अब पापा भी आते ही होंगे, वो आते ही चाय मांगते हैं।
4: अच्छा अच्छा, ये ले एक रुपया, तुम में से कोई बाजार से पाव भर दूध ले आए।

0: आशा, तू चाय का पानी आग पर रख दे। और वो छोटी कहाँ है?
1: मंजू साथ वालों के घर गई है बच्चों का प्रोग्राम सुनने।
0: अच्छा अच्छा, अब तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पापा के आने का वक्त हो गया है। मैं चलकर जरा विनोद को देखूं।
1: कर ली शिकायत माँ से? क्या मिला तुम्हें शिकायत करके?
2: मैं तुझे अभी बताती
1: हूँ। तू मुझ पर हाथ उठाएगी? तू मार के देख मुझे।
2: मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। तू समझती क्या है अपने आप को?
1: और तू क्या समझती है अपने आप को?
2: मैं
1: तू समझती है मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी? तू बड़ी है तो क्या हुआ?
2: ये ले, तूने मुझे मारा।
1: हाँ
2: तेरी, तू समझ,
1: मैं और मारूंगी तुझे।
2: छोड़ ले,
1: छोड़ ले, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।
2: छोड़ ले,
1: पहले तू छोड़, तू मुझे छोड़ ले।
3: क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे ये क्या हो रहा है? जो हैवानों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो। जरा सी शराफत हो तो डूब के मर जाओ तुम दोनों, नालायक कहीं के।
1: पापा बात ये है,
3: मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ निकल जाओ यहाँ से।
4: हे भगवान, तू मुझे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? मैंने तो सोचा था एक घर होगा, घर में बीवी होगी, बच्चे होंगे, आराम होगा, खुशियां होंगी। लेकिन ये तो वो घर नहीं जिसके बारे में कभी सोचा था। इस घर में तो जीना मुश्किल हो गया है। अब ये घर नहीं रहा, अब ये जहन्नुम है, जहन्नुम।
0: तुम आ गए, बड़ी देर कर दी आज।
4: हाँ, आते आते हो गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? विनोद का क्या हाल है?
0: मेरी तबीयत तो जो है सो है, विनोद की हालत अच्छी नहीं।
4: क्यों, क्या बुखार नहीं उतरा? सुबह तो कम था।
0: दोपहर में बुखार तेज हो गया था, सर में भी दर्द था।
4: तुम डॉक्टर के पास गई होती?
0: मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने विनोद की दवा बदल दी है। तुम्हारे आने से पहले नई दवा की खुराक दूध के साथ मिलाकर पिला दी है। इस वक्त उसे कुछ आराम है।
4: विनोद की बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया है।
0: भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, इस वक्त तो सो रहा है।
4: तुम्हें कुछ खबर है?
0: क्या?
4: जब मैं घर में दाखिल हुआ तो हमारी दोनों बड़ी लड़कियों में हाथापाई हो रही।
0: मरने दो इनको। लो, आशा तुम्हारे लिए चाय ले आई है।
4: लेकिन मुझे ऐसी हरकतों से बहुत कोफ्त होती है।
1: पापा चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। ये दूसरा कप तुम्हारे लिए है माँ।
0: अच्छा, और सुनो आशा, तुम सब्जी वगैरह काट कर रखो, मैं अभी आती हूँ।
1: जी अच्छा।
4: सुनो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा और मुझे अभी और एक काम से बाहर जाना है।
0: अब किस लिए जाना है?
4: अरे तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त भी तो करना है। आज 20 तारीख हो गई है, तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सब तो खर्च हो गए होंगे।
0: हाँ।
4: अच्छा तो मैं चलता हूँ, विनोद को देखती रहना।
0: बड़ी देर कर दी।
4: हाँ, जिससे मिलने गया था वो तो मिला नहीं। फिर किसी दूसरे के पास जाना पड़ा।
0: पैसों का इंतजाम हो गया?
4: हाँ हो गया। बच्चे सो गए?
0: हाँ, सो गए।
4: और विनोद?
0: सो गया है वो भी।
4: कुछ खाया उसने?
0: हाँ, थोड़ा सा दूध पिया।
4: चलो हम भी चलकर सो जाएं। शकुन, एक बात पूछूं?
0: पूछो।
4: हम लोग इतने दुखी क्यों हैं?
0: शायद हम लोगों ने जिंदगी को कभी अच्छी तरह समझा नहीं।
4: तो क्या हम लोग बेवकूफ हैं?
0: सोचो अब।
4: शकुन
0: जी,
4: मैं तो हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ।
0: ऐसा बस सोचो, सोचो अब।
4: अच्छा,

विनोद कुमार वर्मा बल पृथ्वीराज वर्मा अदालत में हाजिर हूँ। पृथ्वीराज वर्मा बल सूरज प्रकाश वर्मा और उनकी बीवी शकुंतला देवी वर्मा भी अदालत में हाजिर हूँ।

0: और कैसे जानते हैं?
1: ओ हुजूर, बात ये है कि पृथ्वीराज हमारा पुराना दोस्त है। ये बहुत शरीफ इंसान है हुजूर।
0: गुलिस्तान खान, आप भी तो शरीफ इंसान हैं।
1: हुजूर का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गुलिस्तान खान, क्या ये ठीक है कि आपने पृथ्वीराज वर्मा को काफी बड़ी रकम बतौर उधार दे रखी है?
1: बात ये है सरकार कि दोस्तों में तो थोड़ा बहुत उधार चलता रहता है।
0: उधार की कुल रकम कितनी है?
1: सरकार आप क्या करेगा पूछ के?
0: गुलिस्तान खान, आपको मालूम है कि अदालत से वाकयात को पोशीदा रखना एक जुर्म है।
1: खूब बात यह है सरकार कि उधार का कुल रकम कोई 1,000 रुपये।
0: शुक्रिया गुलिस्तान खान, योर विटनेस।
2: गुलिस्तान खान, आप जो वक्त बवक्त मेरे मवक्कल को उधार देते रहे, तो वो किस गरज से? इमदाद के तौर पर या सूद कमाने के गरज से?
1: हम सूदखोर नहीं है सरकार, खुदा कसम सूद खाना हमारे लिए आराम में। खूब पृथ्वीराज हमारा दोस्त है, भाई है, इसका छोटा छोटा बच्चा लोगे, हमको बच्चा लोग अच्छा लगता है। हम बच्चा लोग की खातिर पृथ्वीराज की मदद करता है। ओ हुजूर, जब उसका हाथ तंग होता है, अगर पृथ्वीराज भी हमारा पिस्सा खा जाए तो खुदा कसम हमको कोई परवाह नहीं। लेकिन पृथ्वीराज एक शरीफ आदमी है, वो हमको हर महीने कुछ न कुछ देता रहता है।
2: गुलिस्तान खान, शुक्रिया।
1: अब हम जा सकते हैं हुजूर?
3: आप जा सकते हैं। और कोई गवाह है?
0: मिलॉर्ड, मैं तीसरे गवाह को पेश करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये तो साबित कर दिया कि मुलजिम की तनख्वाह 4,450 रुपए है। जाहिर है इतनी तनख्वाह में 6 बच्चों को पालना बिल्कुल नामुमकिन है। बल्कि योर ऑनर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुलजिम पृथ्वीराज वर्मा की माहाना आमदनी 4,450 की बजाय 2,500 भी होती, तो भी उनको 6 बच्चे पैदा करने का कोई हक नहीं। हर बच्चा जो पैदा होता है वो अपने माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बायस होता है। अगर ऐसी अहम जिम्मेदारी को निभाने में जरा भी कसर रह जाए तो वो बच्चा खुद अपने माँ बाप के लिए नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए एक गैर जरूरी बोझ बन के रह जाता है। होशमंद और जिम्मेदार वालदैन मुल्क की मुश्किलात को हमेशा पेश नजर रखकर जिंदगी बसर करते हैं। हर शहरी का यह फर्ज है कि वो मुल्क की मुश्किलात में मुल्क का हाथ बटाए। अगर ऐसा करने के बजाय कम पहम और गैर जिम्मेदार वालदैन जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करके मुल्क की परेशानियों में इजाफा करेंगे तो वो मुजरिम ही करार दिए जाएं।
3: वकील साहब, मुकदमे की नौइयत जाहिर है, आप अपना अगला गवाह पेश कीजिए।
0: मिलॉर्ड, मुझे लेडी डॉक्टर शीला डिकोस्टा से चंद सवाल पूछने की इजाजत दी जाए।
3: इजाजत है।
0: डॉक्टर डिकोस्टा, क्या आप प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं?
4: जी नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ।
0: आप शकुंतला देवी वर्मा को जानती हैं?
4: जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ।
0: वो कैसे?
4: इनके आखिरी 3 बच्चे मेरे ही हाथों में पैदा हुए हैं।
0: फिर तो उनके 6ठे बच्चे यानी मुद्दई विनोद कुमार की सेहत के बारे में तो आप जानती होंगी।
4: विनोद कुमार और उसकी वालदा दोनों मेरे पास अक्सर इलाज के लिए आते हैं। दोनों की सेहत ठीक नहीं है, बल्कि विनोद कुमार की सेहत तो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं।
3: डॉक्टर डिकोस्टा, आपकी राय में विनोद कुमार की सेहत खराब रहने की बुनियादी वजह क्या हो सकती है?
4: विनोद कुमार अपने माँ बाप का 6ठा बच्चा है, इसलिए पैदाइश से ही जिस्मानी कमजोरी और कम वजनी का शिकार है। फिर अच्छी खुराक की कमी और देखभाल में लापरवाही से सेहत खराब रही है। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि अगर विनोद कुमार की सेहत का यही हाल रहा जो इस वक्त है, तो वो टीबी का शिकार हो सकता है।
3: सवालों का सिलसिला जारी रहे।
0: डॉक्टर डिकोस्टा, क्या आपको कभी भी शकुंतला देवी वर्मा को समझाने का मौका नहीं मिला?
4: किस बारे में?
0: यही कि हर साल एक बच्चा पैदा करना कोई अकलमंदी नहीं बल्कि जहालत है।
4: मैं खुद ज्यादा बच्चे इकट्ठे करने के हक में नहीं। मेरी शादी को 15 साल हो गए और मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बाकी रही बात शकुंतला देवी को समझाने की, तो मैंने इस काम में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बल्कि मैंने इनके 4थे बच्चे की

0: फिर हमें भूखा मारने के लिए ही पैदा किया जाता है। यकीन मानिए जज साहब, मुझे इस छोटी सी उम्र में जिंदगी से और जिंदगी की हर शय से नफरत हो गई है, इंतहाई नफरत। यहाँ तक कि जब कभी मुझे कोई औरत अपना सूजा हुआ पेट लिए घूमती फिरती नजर आती है तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसको गोली मार दूं। मुझे नफरत है ऐसी औरतों से जो बिना सोचे समझे आए दिन बच्चे पैदा करती रहती हैं। मैं तो हमेशा यही दुआ मांगती हूँ कि ऐसी औरतों का हर फालतू बच्चा पैदा होते ही मर जाया करे। मुझे अपनी जात से नफरत है, मुझे अपने आप से नफरत है। मैं खुद भी तो एक फालतू बच्चा हूँ, मेरी तरह मेरी छोटी बहन वो भी फालतू है, और मेरा भाई विनोद वो जो आपके सामने बैठा है, वो जो एक जलती फिरती लाश से कम नहीं, वो भी फालतू है। हम तीनों को और जिंदा रहने का कोई हक नहीं, न मुझे न मेरी छोटी बहन को, खुद मेरे भाई विनोद। विनोद, विनोद, जज साहब देखिए विनोद को क्या हो गया। जज साहब।
1: ओहो, शायद अचानक बेहोश हो गया है। डॉक्टर डिकॉस्टा कहाँ है?
2: यस योर ऑनर।
1: डॉक्टर डिकॉस्टा, आप जरा विनोद का मुआयना कीजिए, इसको होश मिलाने की कोशिश कीजिए।
2: यस योर ऑनर।
1: अदालत की कार्रवाई जारी रहे।
3: मिलॉर्ड, हो सकता है विनोद की हालत तशवीशनाक हो, ऐसी सूरत में मेरे मवक्किल यानी विनोद कुमार के वालदेन अपने बच्चे के पास अभी और इसी वक्त जाना चाहेंगे, इसलिए मेरी दरखास्त है कि मुकदमे को मुलतवी कर दिया जाए।
2: मिलॉर्ड।
1: यस डॉक्टर डिकॉस्टा, विनोद की तबीयत कैसी है?
2: मिलॉर्ड, विनोद को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया।
1: व्हाट? ऑर्डर, ऑर्डर।
4: विनोद,
5: अरे आपको क्या हुआ? आप बड़बड़ा क्यों रही हैं?
4: नहीं, वो तो एक ख्वाब था, लेकिन सच बताओ मेरा विनोद कैसा है?
5: वो सो रहा है।
4: नहीं, मैं उसे अभी देखूंगा।
5: आखिर बात क्या है?
4: मेरा विनोद नहीं बचेगा शकुन। हम गुनाहगार हैं, हम लोग मुजरिम हैं शकुन, मुजरिम हैं।

हम लोग मुजरिम हैं। अभी आप श्री V.S.N. कैम्फर का लिखा हुआ ये उर्दू नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ, सहायक कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकार थे गुलशन कपूर, सोनिया गोगिया, कंचन बाला, ललिता शंकर, विश्वास मोहन, महेश फरदयाल, भगवान दास, S.P. लाल गोयल, कमला कुमारी चोपड़ा, माला मल्होत्रा, राम अवतार शर्मा और T.R. मेहता। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी दिल्ली पर तैयार किया गया और वहीं से प्रसारित किया जा रहा था।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना नाटक हम लोग मुजरिम हैं। श्री वी एस एन कैंकर के उर्दू नाटक का ये हिंदी रूपांतर था। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। पहली प्रस्तुति में अमीर खुसरो का ये पारंपरिक कलाम स्वर है आबिदा परवीन का।
1: सानी बगरे

श्रोताओं, अमीर खुसरो के ये पारंपरिक शब्द थे, आवाज़ थी आबिदा परवीन की। कार्यक्रम के अगले सोपान में आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली का लिखा ये कलाम, स्वर है पंकज उदास का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आप सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को।

जगजीत सिंह चित्रा सिंह को अभी आपने सुना। इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित। आपके साथ तबला संगत की है अनिंदो चटर्जी ने।

0: पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का राग ललित में बांसुरी वादन अभी आपने सुना। तबला संगत कर रहे थे अनिंदो चटर्जी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive

0: massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।